अगनशोरी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:37 और 11 सेकंड और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। भोर सुहानी की वो खूबसूरत महफिल है जिसमें बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं और जिंदगी की बातों के साथ। दोस्तों कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव हमेशा होता रहता है और ये यूं ही होता रहेगा। इसी तरीके से इस रंग बदलती दुनिया में लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है और कभी कभी हालात भी हमारे खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलनी चाहिए, वो है हमारे दिल की अच्छाई, हमारा भरोसा और आगे बढ़ने का हौसला, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, कभी सपनों की अहमियत, कभी अपनों की अहमियत, तो कभी खुद को संभालने का हुनर। अगर दुनिया बदल रही है तो हम भी सीखें टूटना नहीं बल्कि और मजबूत होना। यकीन माने हर बदलता मौसम अपने साथ नई शुरुआत लेकर आता है, बस जरूरत है दिल में उम्मीद बनाए रखने की, क्योंकि इस बदलती दुनिया में जो मुस्कुराना नहीं छोड़ते उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की

समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिन कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM एंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मातृभूमि को नमन करते हुए आरंभ कर रहे हैं इस मातृ वंदना के साथ।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये मातृवंदना, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, सुनिए ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जसविंदर सिंह के दोहे। आवाज़ थी शवाना आजमी, जावेद अख्तर और साथियों की, और ये वर्ड्स थे अतुल तिवारी के, और संगीत संयोजन था कुलदीप सिंह का। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, इस मंत्र के साथ इस भजन की शुरुआत करते हैं।

अभी आपने सुना मुनि श्री विमर्श सागर के स्वर में ये भक्ति गीत। लीजिए श्रोताओं, सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: भीमसेन जोशी के गाए हुए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवप्रिय केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है चिंतन का, विषय है महाकाव्य, आलेख है डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी का और वाचक स्वर है सुनील केशव देवधर के।
1: रामायण तथा महाभारत भारतीय साहित्य की परंपरा में विराट महाकाव्य हैं। दोनों संपूर्ण युग की रचनाएं हैं। दोनों में भारत की आत्मा समाई हुई है। वाल्मीकि की रचना के संबंध में कवींद्र रवींद्र ने कहा है, रामायण किसी कवि की कविता नहीं, वो तो सारे देश की रामायण है। रामायण से भारतवर्ष और भारतवर्ष से रामायण को हम पहचान सकते हैं। रामायण कोई इतिहास की कथा नहीं है, परिपूर्ण मनुष्य के आदर्श चरित्र को सुनने की इच्छा से हम भारतीय अत्यंत प्राचीन काल से ही रामायण को सादर सुनते आए हैं। महाभारत के संबंध में तो हमारी परंपरा ये मानती ही आई है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के संबंध में इस महाभारत में जो कुछ कहा गया वो अन्यत्र भी मिलता है, पर जो इसमें नहीं कहा गया वो और कहीं भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार की एक दूसरी उक्ति है, यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो कुछ महाभारत में नहीं वो भारत देश में भी नहीं है। विषय वस्तु के निर्वाह और अद्वितीय चरित्रों की परिकल्पना में व्यास और वाल्मीकि दोनों की प्रतिभा ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है वे आज भी अगम्य हैं। महाभारत में भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, कुंती, द्रौपदी आदि के चरित्रों के संबंध में तो यही कहा जा सकता है, न भूतो न भविष्यति। ऐसे अद्वितीय लोग इस धरती पर न पहले हुए न आगे होंगे। चरित्रों का ये बेजोड़पन इसलिए कि व्यास ने जीवन के अंतर्द्वंद्वों, रहस्यों और अंतर्वि

0: विरोधों को गहन और तटस्थ दृष्टि से जांच परख कर उन्मीलित किया है। दूसरी ओर रामायण के चरित्रों को ऋषि कवि वाल्मीकि की कोमल संवेदना, आदर्श जीवन बोध और उदात्त दृष्टि ने जो रूप दिया है, उसके कारण ये उक्ति चरितार्थ हो सकी है कि यावत् स्थास्यन्ति गिरियः सरित एच महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक धरती पर पहाड़ और नदियां हैं, तब तक रामायण की कथा संसार में गाई जाएगी। वाल्मीकि की कविता में कोमलता और राग है, व्यास में बलशालीता, ऊर्जा और गत्यात्मकता है। श्री अरविंद ने व्यास के संबंध में उचित ही कहा है, व्यास सबसे अधिक मर्दानी कवि हैं। व्यास मस्तिष्क के कवि हैं, वाल्मीकि हृदय के। व्यास जीवन के कटु यथार्थ का बोध कराकर मनुष्य को निवृत्ति का अनुभव देते हैं, वाल्मीकि मनुष्य के हृदय के सौंदर्य और राग का आविष्कार कर हमें करुणा की स्रोतस्विनी में निमज्जित करते हैं। नवीं शती के संस्कृत काव्य शास्त्र के महान आचार्य आनंद वर्धन ने ठीक ही कहा है कि महाभारत में शांत रस प्रधान है और रामायण में करुण रस। युद्ध की सारी विभीषिका, संघर्ष और कौटुंबिक कलह के बाद महाभारत का अवसान विरक्ति में ही होता है और रामायण का करुणा में। वास्तव में व्यास और वाल्मीकि दोनों की उपलब्धियां विश्व साहित्य में अनुपम है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन महाकाव्य विषय पर। आलेख था डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी का और वचन स्वर थे सुनील केशव देवधर के। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में गायक स्वर है अनुराधा पौडवाल की।

माया, मोह, ईर्ष्या आदि के लक्षण बताते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, मनोरथ कीड़ा है और शरीर लकड़ी। जिस प्रकार लकड़ी में घुन लग ही जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में संतान, संपत्ति और सम्मान पाने की लालसा पैदा होती है। माया की सेना संपूर्ण जगत में व्याप्त है। माया से मुक्ति राम कृपा के बिना नहीं मिल सकती।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में गायक स्वर थे अनुराधा पौडवाल के। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM एंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि समय की। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव।
1: किसान भाइयों, आने वाला समय खरीफ फसलों का होगा और खरीफ फसलों से अच्छा उत्पादन के लिए अच्छा प्रबंधन उपाय अभी से करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संतुलित उर्वरक उपयोग। संतुलित उर्वरक उपयोग से आशय है किसान भाइयों, जो अनुशंसित मात्रा में है, जिस फसल के लिए जितनी खुराक है वह मृदा परीक्षण के आधार पर दी जाए और एक समन्वित प्रणाली होती है उसके माध्यम से पूर्ति की जाए। यहाँ किसान भाइयों ये बताना भी जरूरी है कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली फसल उत्पादन के लिए जो मुख्य कारक होते हैं, उसमें सबसे पहले गोबर की खाद आता है, जिसको हम जीवांश खाद कहते हैं। गोबर की खाद हम नाडेप के माध्यम से दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। आजकल प्राकृतिक खेती का दौर चल रहा है तो घनजीवामृत के माध्यम से देते हैं। तो ये सारी फसलें के लिए जो आवश्यक होती हैं, सारे पोषक तत्व देती हैं, इसको फसल की बुवाई से पहले खेत की आखिरी जुताई के समय दी जाता है। लेकिन अभी आवश्यकता है ऐसी खादों का, आप सही तरह से उनको बना लें और ताकि वो आने वाले समय में आपको उपयोगी हो सके। दूसरा आता है हरी खाद। हरी खाद भी एक ऐसी खाद है जो जीवांश पदार्थ की मात्रा बहुत तेजी से जमीन में बनाती है और बढ़ाती है। आने वाले समय में कभी कभी वर्षा हो जाती है, आप देखते हैं, तो हरी खाद में जो सन है, ढेंचा है या उड़द मूंग है, इसका भी बीज आप फसल में डाल सकते हैं। तो खेत में डालेंगे तो 25-30 दिन की जब ये हरी खाद की फसल हो जाती है तो खेत में इसकी पलटाई कर दें। खेत में जब पलटाई कर देते हैं तो ये 25 से लेके 80 किलोग्राम तक प्रति हेक्टर नाइट्रोजन फिक्स करती है। और ये जैसे हमारी धान की फसल लगाएंगे या जो भी फसल लगाएंगे उसमें प्रतिपूर्ति नाइट्रोजन की करने में बहुत सहायक होती है और मिट्टी की भौतिक दशा में बहुत अच्छा सुधार लाती है। तीसरी बात आती है किसान भाइयों, जब हमने ये दो उपाय कर लिए, जीवांश खाद दी, हरी खाद दी, अब आता है कि हमको जैव उर्वरक जो हमारे ऐसे हैं, जो चाहे वो बैक्टीरिया हो या हमारी जो फफूंद है, जो मित्र हैं, लाभकारी हैं, जिसमें एजिटोबैक्टर है, एजोस्पोरिलियम है, ये अनाज वाली फसलों के लिए उपयोगी है, या ब्लू ग्रीन एल्गी है जो धान के लिए उपयोगी है, और साथ ही राइजोबियम है या फास्फोरस गोलक जीवाणु है, इसके टीके भी लगाए जाते हैं। तो ये बातें हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम बीजोपचार करते हैं, तो उस खेत में हमको जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। या खेत की जुताई के समय भी किसान भाइयों, हम ऐसे उर्वरकों का कुछ मात्रा में मिट्टी में मिला के बुरकाव कर सकते हैं, ताकि जैव उर्वरकों की पूर्ति, जो वहाँ का माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो बढ़ सके। फिर आती है कि रासायनिक उर्वरकों को हम देना है। जब हम ये सारा समन्वित करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता हमारी 50% तक कम की जा सकती है, और वो 50% से हमारी फसल की उत्पादन की लागत भी कम होगी। तो हम रासायनिक उर्वरक जब देते हैं, चाहे अनाज वाली फसल हो या दाल वाली फसल, अनाज वाली फसलों में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देते हैं, जिसमें फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा नाइट्रोजन की 2 भागों में या 3 भागों में मात्रा दी जाती है। खासतौर से खरीफ में अब धान की जब बोनी की जाती है तो नाइट्रोजन को 2 या 3 भागों में स्प्लिट डोज में दी जाता है। लेकिन जब मूंगफली है, सोयाबीन है, उड़द है, या जो ऐसी फसलें दलहन परिवार से तालमेल रखती है, उनके लिए हम एक ही बार में देते हैं, तो उसमें संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की ये प्रणाली अपनाते हैं, तो बहुत कम मात्रा में रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है। और रासायनिक उर्वरक महंगे भी होते हैं, पर्यावरण के लिए अति ज़्यादा देने से नुकसान भी होता है, जमीन का भी दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। तो संतुलित मात्रा में, अनुशंसित मात्रा में देने की उपाय करना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली कहलाती है। अब किसान भाइयों, बात आती है जो हम फसल लगाने जा रहे हैं, यदि हम दलहनी परिवार की लगा रहे हैं तो हम उसके लिए दलहनी परिवार के लिए जो राइजोबियम है या जो एजिटोबैक्टर है अनाज वाली फसलों के लिए, उसको अभी से व्यवस्था करें और उसको छाया में रखें। कभी भी इसको धूप में नहीं रखना चाहिए। और जब हम जैसे जो खाद बनाते हैं उसको भी खुली मात्रा में ना छोड़ें और उसको छाया में रखें। जब बीजोपचार करेंगे तो बीजोपचार की प्रक्रिया में राइजोबियम का उपयोग करें, फिर उसके बाद आप फफूंदनाशक से उपचार करें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आने वाले खरीफ में आप समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संतुलित उर्वरक उपयोग कर सकते हैं, अपनी फसलों की लागत कम कर सकते हैं, पर्यावरण को और मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि सामयिकी के अंतर्गत खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में 7:05 पर सुनिएगा लघु वार्ता सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर। 7:20 पर सुनिएगा काव्य पाठ श्री मुकेश श्रीवास्तव से। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज गजलें। 7:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 7:45 पर सूचना परक दैनिक कार्यक्रम रहेगा नमस्कार शिवपुरी। आप अपनी फरमाइश के गीत सुन सकते हैं 8:30 पर और 9:30 पर। श्रोताओं, 9:00 लोक संगीत का कार्यक्रम रहेगा लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बृजेश कुमार यादव एवं द्वारिका प्रसाद कुशवाहा के गाए हुए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 10:00। 10:05 पर कार्यक्रम रहेगा सुगम संगीत। श्रोताओं, 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, सुबह 11 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 1 बजे रहेगा महिला कार्यक्रम एवं 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर भी आप सुन सकते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम रीवा केंद्र की प्रस्तुति रहेगा।

फिल्म संगीत के अंतर्गत 8:30 पर और 9:30 पर आपकी फरमाइश के गीत संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम रहेगा रीवा केंद्र की प्रस्तुति और साथ ही साथ यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं 7:21 पर कार्यक्रम रहेगा चौपाल आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। इसके अंतर्गत अभिवादन एवं आरंभिक चर्चा में स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित जीवन और फसल विविधीकरण क्यों और कैसे। 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी रहेगा। अभिवादन एवं आरंभिक चर्चा में प्राकृतिक खेती हेतु किसानों में जागरूकता, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लाभ, भेंटवार्ता, व्यावसायिक डेयरी प्रबंधन और संबंधित योजनाएं वार्ताकार डॉक्टर गायत्री कश्यप से, भेंटकर्ता डॉक्टर समर्थ अग्रवाल, कुछ लोकगीत और साथ ही रहेगी मौसम की जानकारी। श्रोताओं ये थी जानकारी आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण सम्पन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्तवक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत् प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेश सचिव

नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरुबियो राष्ट्रियराजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरुबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे पूर्वीय उत्तर प्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे तेलंगानायां पश्चिम मध्य प्रदेशे पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस यावत् न्यूनतम तापमानं 27 डिग्री सेल्सियस यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडा वार्तायां आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है।

0: सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक अरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर लघु वार्ता। सांप्रदायिक सद्भाव एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है विभिन्न धर्मों, जातियों, पंथों, लिंगों और पृष्ठभूमियों के लोगों का एक साथ शांति और प्रेम से रहना। यह विभिन्न समुदायों के बीच सद्भावना और सद्भाव को बढ़ावा देने के बारे में है। इसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित या उनसे प्रेरित सह अस्तित्व की नैतिकता को बढ़ावा देना है। सांप्रदायिक सद्भाव एक मजबूत समाज का निर्माण करता है जहां लोग विभिन्न पृष्ठभूमि के बावजूद एक साथ रहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव समाज में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, साथ ही सामाजिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा देता है, जिससे लोग विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना और साथ ही साथ धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना ये भी आवश्यक है, क्योंकि यह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, क्योंकि सांप्रदायिकता और समाज में हिंसा का माहौल सामाजिक तनाव को पैदा करता है। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए लोगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की भावना विकसित करना है। सांप्रदायिकता है क्या? सांप्रदायिकता विभिन्न लोगों के बीच अपने अपने धर्मों के प्रति सद्भाव से रहना और आपस में मिलजुल कर रहना, यही है सांप्रदायिक सद्भाव, जो कि विविध समुदायों के बीच एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिले। यह परस्पर आपस में जुड़ाव, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है और सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय मतभेदों से परे एक साझा पहचान में योगदान देता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा हिंदों से था हमारा। विविधताओं से भरे इस दुनिया में सामाजिक स्थिरता और समृद्धि के लिए सांप्रदायिक सद्भाव आवश्यक है। यह विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ आने और अपने मतभेदों का जश्न मनाने की अनुमति देता है, चाहे वह धर्म, भाषा या जातीयता हो। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में संवाद और शिक्षा शामिल है, जिसमें विभाजन के बजाय साझा मूल्यों को उजागर किया जाता है। इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भाव आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। विविधता को अपनाने वाला समाज प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करता है, जिससे नवाचार और विकास होता है। निष्कर्ष रूप में शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए सांप्रदायिक सद्भाव का बनाए रखना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यह एक अनमोल संपत्ति है, जिसे संजोकर रखना चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर लघु वार्ता। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 47 शहरों में एक साथ होगा आयोजन। देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त, पेट्रोलियम मंत्रालय की लोगों से अपील, खपराहट में ईंधन न खरीदें। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का हुआ आयोजन। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, जीडीपी का आधा हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा। और त्विशा शर्मा मौत मामले में पति समर सिंह ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित होगा। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागों में काम संभालेंगे। श्री मोदी इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। कुछ जगहों पर अस्थायी दबाव को तेल कंपनियां निगरानी और समन्वय से दूर कर रही हैं। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा है और इसे बचाना जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे ताकि घायल जानवरों को भोपाल न लाना पड़े।
1: तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर वन का स्थान मिला है और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलों को लेकर के वहाँ आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार

0: में जल संरक्षण को लेकर भी तीनों साल तीसरा साल चल रहा है, अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने दोनों मंत्रालयों में 10-10 अधिकारियों की टीम बनाने का निर्देश दिया, जो नागरिकों की शिकायतों की भी रोज समीक्षा करेगी। बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में AI और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर जनता के सुझाव लेने के लिए कल ucc.mp.gov.in नाम से वेबसाइट लॉन्च की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में इस वेबसाइट का विमोचन किया। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण पोषण जैसे पारिवारिक कानूनों पर 15 जून 2026 तक सुझाव दिए जा सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उसका पति समर्थ सिंह कल शाम जबलपुर जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। ट्विशा की मौत के बाद से वो फरार था। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने के बाद उसने आत्मसमर्पण किया। वहीं दूसरी तरफ कल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स से कराने का आदेश दिया है। ट्विशा की 12 मई को संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस मामले की जाँच CBI को भी सौंप दी है। CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से NTA की विशेषज्ञ मनीषा हवलदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, पुणे, लातूर समेत कई शहरों में कुल 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। CBI ने लातूर के 2 डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। इन पर बच्चों के लिए लीक पेपर खरीदने का संदेह है। जांच में और अभिभावकों, छात्रों, बिचौलियों के नाम सामने आने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि ड्रोन से पेट्रोलिंग के जरिए बिजली लाइन ट्रिपिंग 35% कम हुई है। वहीं समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं के 473 करोड़ रुपए के सरचार्ज माफ कर दिए गए हैं और 40 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बालाघाट के सांदीपनी विद्यालय वारा सिवनी के 12वीं के छात्र मयंक मात्रे ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रतियोगिता में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। 15 मई को जूम पर हुए लाइव फाइनल में मयंक ने 155 अंक लेकर ग्रैंड विनर का खिताब जीता। इस जीत के साथ उनका चयन सितंबर 2026 में होने वाले नासा एजुकेशन टूर के लिए हुआ है। इस दौरान वे कैनेडी स्पेस सेंटर समेत कई शैक्षणिक स्थलों का दौरा करेंगे। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार $40,000 यानी करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। योजना के तहत हर साल 20 छात्रों का चयन होता है। इस योजना में आवेदन के लिए परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक किसी भी नौकरी में नहीं होना चाहिए। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविन्द्र भवन में एक खास संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। वहीं कल इंदौर केंद्र के 71वें स्थापना दिवस पर मालवा हाउस में जबरदस्त जश्न मनाया गया। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस साल से क्लर्क और स्टोरकीपर पदों के अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन केंद्र पर ही लिया जाएगा। प्रदेश में राज्यव्यापी गिद्ध गणना कल से शुरू हो गई है। पहले दिन 8,748 स्थानों पर गणना हुई, जिसमें 8,810 गिद्ध मिले। ये गणना 24 मई तक सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक चलेगी। इस बार ऑनलाइन ऐप के जरिए गणना हो रही है, जिसमें वन कर्मचारियों के साथ पक्षी विशेषज्ञ, छात्र और स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। प्रदेश में मछली पालन उत्पादन बढ़ाने को लेकर कल भोपाल में हितधारक सम्मेलन हुआ। निवेशकों ने 2 लाख केस लगाने के प्रस्ताव दिए हैं, जबकि सरकार

लक्ष्य पहले साल सिर्फ 10,000 केस का था। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केस कल्चर के आवेदन की कोई समय सीमा न रखी जाए। सरकार कोल्ड चेन हैचरी और फिश फील्ड के लिए सब्सिडी देगी। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। कल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार रहा। नौगांव में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला, वहां पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में लू का रेड अलर्ट है। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में आरसीबी 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत इंदौर जिले में 25 मई को विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले के ग्राम मामाडोह में कल हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के बाद जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मामाडोह पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आगरमालवा जिले के लिए प्रेक्षक कृष्णमोहन गौतम ने कल जिले सहित बड़ौद के विभिन्न वार्डों के मतदान केंद्रों के साथ ही जिले के विभिन्न गांवों का निरीक्षण किया। मंडला में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। झाबुआ कलेक्टर ने ग्राम समोई में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब से गाद निकासी कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल कलेक्टर ने कल खोड़ा डूंगरी जनपद पंचायत कार्यालय में बैठक लेकर विभिन्न गांवों में नियुक्त जिला अधिकारियों से ग्रामीण समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये शिवपी केंद्र है। समय हुआ है काव्य पाठ का, श्री मुकेश श्रीवास्तव से सुनिए।
2: नमस्कार, अपनी कुछ काव्य रचनाओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ। एक नवगीत देखिएगा। अब तो मेरे घरू पते पर ही अपना खत लिखना, अब तो मेरे घरू पते पर ही अपना खत लिखना। मोबाइल ने दुनिया कर दी छोटी और निरक्षर, सिर्फ अंगूठा लगा लगा कर भेजे मन के आखर। तो कागज को बनवास दे दिया, कलम सूख गई स्याही, और बिन चिठिया के भटक रहे हैं दाना लिए कबूतर। तो लिखना अम्मा की खुशहाली, लिखना अम्मा की खुशहाली, घर की हालत लिखना। अब तो मेरे घरू पते पर ही अपना खत लिखना, अब तो मेरे घरू पते पर ही अपना खत लिखना। दूसरा वन निवेदन करता हूँ कि लिखना अपना कुआं भरा है जिसने प्यास बुझाई, लिखना अपना कुआं भरा है जिसने प्यास बुझाई। कब से आई नहीं चिरैया नीम तले इठलाई, तो बाखर अब भी भरी भरी है भुस से या सूनी है। मंगू और शैलू ने अपने कितनी सानी खाई, तो थोड़ा टैम निकाल ले भैया, थोड़ा टैम निकाल ले भैया, बची विरासत लिखना। अब तो मेरे घरू पते पर ही अपना खत लिखना, अब तो मेरे घरू पते पर ही अपना खत लिखना। और अंतिम बन देता हूँ कि लिखने से मन हल्का होता और आंसू भी बचते, लिखने से मन हल्का होता और आंसू भी बचते, कहने से कुछ सुनते मन से, कुछ सुनते कुछ हंसते। तो इसीलिए तुम लिखना खत में अपने मन मन चीती, इसीलिए तुम लिखना खत में अपने मन मन चीती, बहुरी बिटिया अपने तेरे गुस्से से हैं बचते। तो कागज पर पीड़ा लिखने से उपजी राहत लिखना, कागज पर पीड़ा लिखने से

अंक संभाल चेरैया मौसम बदल रहा, अपने पंख संभाल चेरैया मौसम बदल रहा। बन देखें कि बेमौसम की होती बारिश जब तब पड़ते ओले, और पता नहीं रुकना पड़ जाए पता नहीं क्या होले। तो गंगा जल की क्या बिसात जब, गंगा जल की क्या बिसात जब, जम जम बदल रहा, अपने पंख संभाल चेरैया मौसम बदल रहा। एक चित्र देखिए कि नीम तले बारूद छिपी है चूल्हे में चिंगारी, नीम तले बारूद छिपी है चूल्हे में चिंगारी, उतर गया पानी कुए का सिर पर चढ़ी उधारी। तो जीवन भी अब नहीं एक सा, जीवन भी अब नहीं एक सा, हरदम बदल रहा, अपने पंख संभाल चेरैया मौसम बदल रहा। एक और चित्र देखें कि नील बसेरे नहीं रहे अब पत्ते टूट रहे, नील बसेरे नहीं रहे अब पत्ते टूट रहे, घनी छाँव वाले बरगद भी केवल ठूठ रहे। तो मंद पवन भी नारों वाले, मंद पवन भी नारों वाले, परचम बदल रहा, अपने पंख संभाल चेरैया मौसम बदल रहा। और आधुनिकता का प्रवेश जब हावी होता है तब निवेदन करता हूँ कि प्रकृति प्रदत्त नहीं रुचता है कृत्रिमता ओढ़े, खुली हवा में सांस न लेते बस ऐसी जोड़े। तो बाथरूम संस्कृति नहाता, बाथरूम संस्कृति नहाता, आदम बदल रहा, अपने पंख संभाल चेरैया मौसम बदल रहा, अपने पंख संभाल चेरैया मौसम बदल रहा। एक गजल के कुछ शेर आपके सामने सुना रहा।

0: दिया। शुक्रिया।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ श्री मुकेश श्रीवास्तव से। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। समय हुआ है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

अनपढ़। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं, सुनिए ये गीत।

वो कौन थी इस फिल्म में आप इस गीत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ममता फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन का संगीत।
1: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे।
0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवप्रिय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिव।

सूचना परक दैनिक कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत वंदन अभिनंदन करती है आपकी रेडियो सखी विनीता। एक सुविचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि सपनों को पूरा करते हुए अपने छूट जाते हैं और अपनों के साथ रहते हैं तो सपने छूट जाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, बहुत किस्मत वाले होते हैं वह लोग जो अपनों के साथ रहते हुए सपने पूरा कर लेते हैं, वरना अधिकतर यह होता है कि सपने पूरा करने की चाहत में कहीं अपने छूट जाते हैं। हम उस उद्देश्य को तो प्राप्त कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में और विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अपने वहीं पीछे छूट जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपनों के साथ रहते हैं लेकिन मन में यह रिग्रेट बना रहता है कि यार ये सपने तो हम पूरा कर सकते थे, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, थोड़ी और हिम्मत कर लेते हैं। और किस्मत और यह बैलेंसिंग लाइफ जो पूरा कर लेते हैं वो अपने सपने भी पूरा कर लेते हैं अपनों के साथ रहते हुए भी। बात करते हैं सपनों की। हमेशा मनुष्य के भीतर कुछ बनने की चाहत, कुछ पाने की चाहत और कुछ हासिल करने की चाहत होती है। मनुष्य का जीवन सपनों और आकांक्षाओं से भरा हुआ रहता है और यह सपने ही हैं जो व्यक्ति को जीवन जीने की दिशा प्रदान करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और जिनके जीवन में सपने नहीं होते उनका जीवन नीरस और उद्देश्यहीन होता है। इसीलिए सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए तन मन से जुट जाएं, उन सपनों को पंख दें, उड़ान भरने का प्रयास करें। इससे होता यह है कि हम व्यक्तिगत संतुष्टि को भी प्राप्त करते हैं और जीवन में सफल भी होते हैं। सपनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी आता है कि अपनी जिम्मेदारियाँ। जी हाँ श्रोता, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, अपनों के प्रति समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करना, इससे होता यह है कि हम अनुशासित

रहते हैं, अपनी जमीन से जुड़े हुए रहते हैं और जो व्यक्ति कर्तव्य और साथ में जिम्मेदारियों के बीच में संतुलन बना लेता है उनका जीवन सार्थक और सफल रहता है। हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत आकांक्षाओं से हमारा जीवन भरा हुआ रहता है, तो हमारा उद्देश्य समाज के उत्थान के लिए भी होना चाहिए, समाज के विकास के लिए भी होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए सपने पूरा करें और अपनी जिम्मेदारियों के साथ इसे पूरी तरह से निर्वहन करें।

श्रोताओं पढ़ते हैं अब कुछ खास दिन के बारे में। आज की ऐतिहासिक और राष्ट्रीय घटनाओं के अंतर्गत आज का दिन 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इसके अलावा 2008 में आज

एक दिन भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण भी किया था। अब बढ़ते हैं खास खबरों की तरफ। लघु एवं मध्यम उद्यम तथा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के निर्देशन एवं कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में युवा संगम अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 28 मई 2026 को प्रातः 11 बजे से शासकीय आईटीआई झांसी रोड शिवपुरी में किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले का उद्देश्य जिले के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसरों से जोड़ना तथा विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। रोजगार मेले में सहभागिता हेतु शैक्षणिक योग्यता साक्षर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक आईटीआई एवं डिप्लोमा निर्धारित की गई है। आयु सीमा 18 से 48 वर्ष रहेगी। कार्यक्रम में स्वरोजगार एवं हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित करने वाले विभागों द्वारा पात्र हितग्राहियों को हित लाभ वितरण भी किया जाएगा और इसमें प्रतिष्ठित कंपनियां भी भाग लेंगी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके उपरांत वह गुना जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक में कहा कि त्यौहार आपसी सद्भाव एवं भाईचारे का प्रतीक है। इसके साथ ही बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांग चैन डोलकर भूटिया, अपर कलेक्टर श्री दिनेश चंद शुक्ला सहित अन्य अधिकारी, समिति के सदस्यगण एवं सदगुरु भी मौजूद थे। बैठक में त्योहारों और जुलूस के दौरान बजने वाले तेज ध्वनि के बड़े वाले डीजे को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। सभी सदस्यों की सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक आवाज वाले डीजे के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के समस्त थाना प्रभारियों को भी मुस्तैद रहने को कहा गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप एक वर्ष की अवधि हेतु निगरानी व्यवस्थाओं एवं क्रियान्वयन के लिए जिले में विशेष सेल का गठन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में शिवपुरी जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 के तहत विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। विशेष प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कलेक्टर शिवपुरी रहेंगे और इसके अलावा कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी, क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जबकि परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण सदस्य सचिव रहेंगे। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले के विभिन्न बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिले के पात्र युवक युवतियों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बोर्ड द्वारा तकनीकी, रचनात्मक और पारंपरिक व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से तकनीकी क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, सोलर पैनल, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, मशीन ऑपरेटर, परिधान एवं डिजाइनिंग में फैशन डिजाइनिंग, सिलाई, गारमेंट्स, फैब्रिक, ड्राफ्टिंग, कटिंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी, पारंपरिक एवं हस्तशिल्प में जरी, जरदारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, लेदर, फुटवेयर, अगरबत्ती निर्माण, कुतिन बुनकर, अन्य में ब्यूटिशियन, बेकरी, दोनापत्तन निर्माण और मधुमक्खी पालन का उच्च स्तरीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 12 जून 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए किसी भी तकनीकी सहायता के लिए आवेदक पोहरी रोड स्थित जिला पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं,
आज बात करते हैं हम तापमान की। अधिकतम तापमान रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रहेगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा और आर्द्रता रहेगी 28%। ये थी जानकारी श्रोताओं आज कुछ खबरों से, और दीजिए सूचना परक दैनिक कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
6: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का

0: आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जांजीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
5: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
6: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, है प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ते की हेडलाइन है आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honoured with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
9: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments including ministries of railways, home affairs, health and family welfare and department of higher education among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
8: The Reserve Bank of India RBI has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a 4-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology, and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the airport. The U.S. Department of State said during his stay in Kolkata, Mr. Rubio will visit Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said later in the day, U.S. Secretary of State will travel to New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties, and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad, framework. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honor of her Cyprus counterpart Nikos Christodoulidis and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान साझा मूल्य विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
8: President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, also highlighted the friendship with India.
10: Cyprus and India appear geographically separated by thousands of miles. They differ slightly in size and population, and yet there is an invisible thread that has woven our countries and our people together and has seamlessly connected our countries for centuries.
8: Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honored with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. We have a report.
11: Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The recipient is selected annually from nominations submitted by force commanders and heads of mission across UN peacekeeping operations worldwide. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honor. Earlier, Major Suman Gavani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. India remains one of the largest contributors of troops and police personnel to UN peacekeeping missions across the world. Swati Rukheja, Akashwani News, Delhi.
8: The Indo-Tibetan Border Police, ITBP, has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historic milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
12: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of nation before self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri, and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
8: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. As part of our series, People's Padma on Akashwani, in our upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Vibhushan.
13: मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और

0: 2025-26, US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिवप्री केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फरमाइशी खत हमारे पास आया है मलोट कैंप पंजाब से। सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरुचरण गरोवर और रमेश मिगलानी का आप सभी की फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

0: आए तीन बहार के इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आपकी फरमाइश के और भी गीत सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है चांडूर बिस्वा तालुका नांदोरा से, जिला बुरवाणा महाराष्ट्र से सुनने वाले हमारे श्रोतागण हैं नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आशा फिल्म से। ये गीत आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है गांधी कॉलोनी से नवीन भंसाली, शालिनी भंसाली, प्रेरणा भंसाली, कुणाल भंसाली और साथ ही नीना नाहटा, आलोक नाहटा, हर्षिता, तनिषा। सिद्ध बिहार कॉलोनी से रवि जैन, पर्व जैन, अवनी जैन और कोको जैन का आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं।

हिमालय की गोद में इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। इंदीवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती प्रयाग चौधरी, गणेश दादा परी, संजना ललिता, नारायण खर्चे, कार्तिक भाऊ मराठा और गणेश दादा मराठा का। आइए आपकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

आप आए बहार आए, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवप्री केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा ततरेंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा का। लीजिए, आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, अख्तर रोमानी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को है प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बृजेश कुमार यादव, द्वारिका प्रसाद कुशवाहा के गाए हुए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देवी गीत के साथ, द्वारिका प्रसाद कुशवाहा।

अभी आप सुन रहे थे द्वारिका प्रसाद वर्मा कुशवाहा का गाया हुआ ये लोकगीत। लीजिए सुनिए ब्रजेश कुमार यादव का गाया हुआ ये।

0: अभी आप सुन रहे थे बृजेश कुमार यादव का गाया हुआ ये लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। श्रोता और भी सुनवाएंगे लोकगीत इस अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं सुनिए द्वारिका प्रसाद कुशवाहा का गाया हुआ ये लो।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये दादरा द्वारिका प्रसाद कुशवाहा का। अब लीजिए श्रोताओं सुनिए चौकड़िया द्वारिका प्रसाद कुशवाहा का।

ब्रजेश कुमार यादव के गाए हुए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फरमाइशी खत हमारे पास आया है महादेव घाट अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर,

0: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद पक्षी की रचना थी, जतिन ललित का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से, और भी फरमाइशी गीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? So easy!

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से, और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए, सुनिए ये गीत।

दिल तो पागल है, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाजों में। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है औरंगाबाद से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश का। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश का।

विश्वात्मा। इस फिल्म का गीत आपने सुना, साधना सरगम की आवाज में आनंद बख्शी की रचना थी, विजू शाह का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है सिद्धि बिहार कॉलोनी से रवि जैन, पर्व जैन, अवनी जैन, कोको जैन का। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा का। आपकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको।

वांटेड इस फिल्म का गीत आपने सुना वाजिद और अमृता कक्कर की आवाज़ों में। जैलीस शेरवानी ने इस गीत को लिखा था, साजिद वाजिद ने संगीत तैयार किया था। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नोपो, ऋषिका और रॉबिन का। आपकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये

दाग दी फायर। इस फिल्म का गीत आपने सुना जसविंदर नारोला, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शुभ्री केंद्र है FM 100.2 MHz पर। सुबह के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा करें और सुनते रहें ये गीत।

बात सबसे पहले मौसम की। नौतपा शुरू होने में अभी दो दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही दमोह जिले में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले साल 2022 में इतना तापमान रिकॉर्ड किया गया था। भीषण गर्मी के बीच जिले में जल संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगे हृदयपुर, इमलाई, आमचोपड़ा, बरमासा, सिंहपुर, खजूरी समेत दर्जनों गांवों के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पिछले दिनों मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत दमोह रेलवे स्टेशन से यात्रियों को माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए रवाना किया गया। प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने तीर्थ यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वातानुकूलित ट्रेन से जिले के 263 यात्री माता के दर्शन के लिए रवाना हुए। जिले के प्रभारी मंत्री ने जिला जेल पहुंचकर नवनिर्मित डबल स्टोरी बैरक का लोकार्पण किया। करीब 1,18,00,000 रूपये की लागत से तैयार इस बैरक का उद्घाटन कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव लगातार शासकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, तहसीलदार समेत कई अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिले में वृद्धावस्था, पेंशन से वंचित बुजुर्गों की समस्या को देखते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सेवा और आशीर्वाद अभियान शुरू किया है। जिले में 1664 ऐसे पात्र प्रतिजन चिन्हित किए गए हैं जिनकी समग्र ईकेवाईसी लंबित होने के कारण पिछले 8-9 माह से पेंशन बंद है। अभियान के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां वृद्धजनों के निशुल्क ई केवाईसी कर पेंशन शुरू कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरी ओर दमोह नगर के खजरी मोहल्ला निवासी समीर अहिरवार अपनी अनोखी खोज किसान मित्र छड़ी को लेकर चर्चा में हैं। ये छड़ी मिट्टी परीक्षण के साथ साथ कंपन पैदा कर किसानों को सर्प दंश से बचाने में भी मदद करती है, जिससे करीब 3 मीटर दूर तक सांप भाप जाते हैं। समीर के इस खोज का लोकार्पण केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। वहीं उन्हें स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट भी मिली है। अब वे पराली से पेपर, पेन और पेंसिल बनाने पर भी काम कर रहे हैं। रासायनिक खेती के दौर में ग्राम बांसा कला के सीमांत किसान परसादी पटेल ने जैविक खेती अपनाकर मिसाल पेश की है। 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन में वे घर पर तैयार केचुआ खाद से गेहूं, उड़द, चना, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिल रहे हैं। सांसद राहुल सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किनबेतवा लिंक परियोजना, मेडिकल कॉलेज, सड़क और पुल निर्माण सहित किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित ज्ञान भारतम पांडुलिपि मिशन के तहत जिले में पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अब तक जिले में 97 पांडुलिपियों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से 63 पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड भी किया जा चुका है। खेल जगत से अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हैंडबॉल संघ के तत्वाधान में 10 से 12 मई तक अशोकनगर में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें दमोह जिले की बालिका टीम ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जिले में उत्साह देखने को मिला है। श्री दिगम्बर जैन श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर और श्री दिगम्बर जैन पंचायत तथा स्थानीय केन्द्रों के तत्वाधान में श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिले के 3 केंद्रों पर हुआ। इसमें 500 ज्यादा शिविरार्थियों ने भाग लिया। शिविर में 22 कक्षाएं संचालित की गई हैं, जिनमें संस्कार, स्वाध्याय, पूजा, संगीत, व्यक्तित्व विकास और जैन संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं दमोह जनपद के पास स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में पिछले दिनों 35 ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 8 वर्ष के बालकों से लेकर 26 वर्ष तक के युवाओं का यज्ञोपवीत संस्कार आचार्य पंडित द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको गुलाम अली की गाई हुई कुछ गजलें सुनवाएंगे।

0: सुगम संगीत इस कार्यक्रम में श्रोताओं आपको गजल और भी सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गुलाम अली की गाई हुई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवप्री केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं इस गीत के

0: लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अभी आपने सुना गीत। फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत तैयार किया था। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं गीत आपको और भी सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गीत।

हरियाली और रास्ता। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर, मुकेश कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, सुनिए ये गीत।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सच्चा झूठा फिल्म से लिया हुआ। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं सुनिए ये

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे यादगार फिल्म से लिया हुआ गीत। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गीत।

कन्यादान, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोता सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति ये की।

0: संगम, इस फिल्म की मैं अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश को, और गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओ, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM 100.2 MHz पर। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकांक्षा का नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसकी शुरुआत बशीर बद्र साहब के एक शेर

0: शेर के साथ। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट कर बचपन के जमाने नहीं आते। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: एक मैं जो है शायरी बोलना चाहता हूँ।
0: जी बोलिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश देश की दिल की धड़कन, जो दिल को छू जाता है और आपके हर कार्यक्रम मन में रच बस जाता है, तभी तो दीदी जी हर श्रोता पहले अपना इंट्रोडक्शन कराता है, उसके बाद आपके चैनल में इंटर कर जाता है।
0: वाह क्या बात है। अब हमारी बात किन से हो रही है वो बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।
1: चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ। दीदी जी को चित्रकूट से सत सत राम राम भेज रहा हूँ।
0: नमस्ते दिनकर साहब जी।
1: दीदी जी का परिचय भी जानना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ
1: जी। बहुत दिनों के बाद आकांक्षा जी आपसे जो है बात हो रही है, इसके लिए धन्यवाद, आपने हमारा फोन रिसीव किया। और मैं जानकारी चाहता हूँ किस चैप्टर पे आज बात होगी।
0: हाँ जी बहुत बढ़िया, आज हम आपको ले चलेंगे यादों के झरोखों से झांकने के लिए, जहाँ आपने बचपन के वो दिन गुजारे हैं खेल कूद के साथ।
1: जी जी जी जी जी, बचपन में तो एक था हम लोगों के जो पूर्वज थे किसान थे, और किसानी में मैं एक दिन याद कर रहा था कि एक जमाना था कि हम बैल गाड़ी में जो है मेला देखने जाया करते थे
0: जी।
1: चार चार पांच पांच बच्चे बैठ के जो है हमारे पूर्वज हमारे दादाजी हमारे पिताजी लेके जाया करते थे, और कहीं भी हम रिश्तेदारी में 30 से 40 किलोमीटर, और एक जो एक सरपट दौड़ होती है दीदी जी
0: जी,
1: बैलगाड़ी की सरपट, एक एक घंटे में 12 से 13 किलोमीटर वो सरपट दौड़ में हमारे बैल जाते थे।
0: बहुत बढ़िया।
1: और हम लोग 40 से 42 किलोमीटर हमारा एक रिश्तेदारी वहाँ हम 3 घंटे में पहुँच जाते थे
0: जी। हम जानना चाहते हैं आपने उस दौर में खेल कौन से खेले हैं दिनकर जी।
1: उस दौड़ में हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड से जो है एक सुर्रा होता था, और एक होता है गिल्ली डंडा होता था, जो है पेड़ में चढ़ के उतर के भी जो है ये खेल खेलते थे, और एक खेल होता था जो है आपका ये छुपा छुपी का खेल भी होता था बचपन में।
0: जी जी,
1: तो इसको भी खेला। और मैं क्रिकेट क्लब से भी जुड़ा रहा दीदी जी, जब वयस्क हुआ तो क्रिकेट क्लब से भी जुड़ा रहा, साइनिंग क्लब जो है बहेरी के नाम से जो है, और इससे मैं जुड़ा रहा। लेकिन ये बचपन के खेल मैंने बताया आपको
0: जी, मतलब जीवन के बहुत ही यादगार और खुशनुमा पल आपने बिताए हुए हैं उन दिनों।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये बचपन की जो यादें होती हैं ये बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब बचपना निकल जाता है व्यक्ति का
0: जी,
1: तो वो फिर दोबारा कभी वापस लौट के नहीं आता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और उस समय गली मोहल्ला ही हमारा विशाल खेल का मैदान हुआ करता था।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक छुआ छुआल भी होता था, जो एक दूसरे कौन कितना तेज दौड़ रहा है उसको भी खेलते थे हम लोग
0: जी। एक दौड़ा उसको आउट किया, फिर जब दूसरा आके उसको छू के चला जाता था तो वो फिर से जिंदा हो जाता था, ऐसा ही कुछ था वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह के खेल भी खेलते थे, और गर्मी का एहसास भी नहीं होता था, बुजुर्ग कहते थे कि गर्मी लग गई है। और मैं दीदी जी आपको ये बता दूं कि मुझे एक जो गर्मी के सीजन में 3-4 बार लू लगती थी।
0: ओहो,
1: तो हमारे यहाँ एक जो ये चने का साग होता सूखा है, हमारी दादी लगाती थी मुझे जो है मार मार के लगाती थी, और वो सूखे साग से ही मेरा सब कुछ सही हो जाता था, कोई ना कोई टेबलेट ना कुछ भी नहीं।
0: असल में क्या था ना दिनकर जी, उस समय धूल मिट्टी से सने हुए हम पसीने से तरबतर अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते थे, और हमारे अंदर से ये आवाज आती थी कि थकना मना है जब तक घर से बुलावा ना आ जाए।
1: जी जी जी जी जी
0: जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दिनकर जी।
1: और ये आपकी बातचीत मेरे प्रेमदास बाबा और सुन रहे हैं, बाजू में बैठे हैं वो भी जो हंस रहे हैं और सुन रहे हैं।
0: उनको भी अपने पुराने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे अपनी बातों से।
1: जी जी याद आ रहे हैं, वो सभी तो मुस्कुरा रहे हैं
0: जी। उनको भी हमारा नमस्कार कहिएगा।
1: नमस्कार कर लिया उन लोगों ने।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
1: जी। दीदी जी नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
0: जी मैम,
1: किनसे हमारी बात हो रही है हम जान सकते हैं?
0: जी लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा, ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह से।
1: लक्ष्मण जी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल बढ़िया है मैम, आप बताइए आप कैसे हैं।
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं। लक्ष्मण जी, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे,
0: जी मैम,
1: जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बचपन के खेलों की जो हमने खेले हुए थे। आपने कौन-कौन से खेल खेले हैं क्या आप हमें बता सकते हैं?
0: जी, हमने खेली थी कबड्डी, खो
1: बहुत
0: खो, फुटबॉल,
1: बहुत बढ़िया।
0: गिल्ली डंडा,
1: अच्छा,
0: अंडा डावरी।
1: इनमें आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था?
0: मैम कबड्डी खेलते थे ज्यादा।
1: कबड्डी खेलते थे।
0: जी, खो
1: अच्छा, ये तो हो गए बाहरी खेल। कभी घर में बैठ के
0: खो
1: वाला
0: वगैरह
1: खेल भी
0: था,
1: खेला है
0: अब
1: आपने?
0: तो खो खो वगैरह तो कम खेलने लगी हूँ मैम।
1: जी, कबड्डी आपका पसंदीदा खेल था। अच्छा, आज
0: और
1: हम
0: वॉलीबॉल भी मैन है।
1: वॉलीबॉल।

0: जी
1: जी
0: कबड्डी आपका पसंदीदा खेल था।
1: जी
0: अच्छा, आज
1: और
0: हम
1: वॉलीबॉल भी मैन है
0: वॉलीबॉल।
1: जी, हमारे यहाँ होती भी है बहुत ज्यादा बार, मुख्य मानी भी हमारे दमोह जिला की टीम बड़ी भाई।
0: लेकिन कुछ के नाम जैसे चेंज हो गए हैं। हम छुपन छुपाई खेलते थे, वो हाइड एंड सीक बोलते हैं उसको है ना। तो आप अपने बच्चों को अपने पुराने दिनों के खेलों के बारे में बताते हैं कि हम लोग ये खेला करते थे।
1: हाँ बता रही थी मैम, क्योंकि लगे हम जानते नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों से अपने कहा हमारे खेला तो नहीं, जितने पुराने खेल हैं ये आप और खेलेंगे हमारे बताओ जी। हालांकि
0: अच्छा,
1: बच्चों के लिए धन्यवाद
0: ठीक है लक्ष्मण सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैम।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत
1: नमस्कार,
0: है।
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुला, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम,
0: ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हैं।
0: आज हम बात कर रहे हैं हमारे बचपन के खेलों की।
1: जी
0: जी, तो उस दौर में 80-90 का जो दशक था और उससे पहले भी, हम जो खेल खेलते थे उसके बारे में, बचपन के दिनों के खेलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप कौन कौन से खेल खेलते थे बचपन में?
1: बचपन में हम तो गिल्ली डंडा खेलते थे।
0: अच्छा, गिल्ली डंडे का खेल कैसा होता है ये हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे, क्योंकि आज बहुत से नए बच्चे हैं जो वो जानते तो हैं इस खेल का नाम कि गिल्ली डंडा ये है, पर उसको खेलते कैसे हैं ये वो नहीं जानते।
1: एक लकड़ी का डंडा होता था
0: जी,
1: और एक छोटी लकड़ी होती थी
0: जिसको गिल्ली कहते हैं।
1: उस लकड़ी को छोटी लकड़ी पर मारते थे, वो उछलते थे तो वो दूर चली जाती थी। जिसकी लकड़ी वो दूर जाती थी,
0: हाँ,
1: और उससे जो जिसकी लकड़ी पास जाती थी उस पर दाम पड़ता था।
0: अच्छा
1: जी,
0: दूर वाला है वो जीत जाता था।
1: वो जीत जाता था
0: जी,
1: पास वाला
0: हार जाता
1: नहीं
0: था।
1: जीतता था।
0: हाँ, आपको याद है अभी भी अपना खेला हुआ खेल?
1: तीन चार लोग, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग भी खेल सकती थी
0: जी।
1: और एक बात ये भी है मैडम कि पुराने खेल जितने थे
0: जी,
1: वो जितने भी बच्चे लोग खेलते रहते थे तो हर प्रकार से कोई ना कोई व्यायाम उसमें होता रहता था।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ रहता था
0: जी। बहुत जरूरी है खेल। आजकल बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं, घर में ही रहते हैं, लेकिन खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: बहुत जरूरी है। और आजकल क्या है, वीडियो गेम खेलने लगे हैं मोबाइल पर
0: जी,
1: तो इसमें स्थिर बैठे रहते हैं तो ये आंखों के लिए भी परेशानी होती है और थोड़ी दिमाग के लिए भी परेशानी होती है
0: जी। बहुत दिक्कत वाला है ये, घर में बैठ के बच्चे जो मोबाइल खेलते रहते हैं उनसे आंखें भी उनकी खराब होती हैं, सेहत पे भी गलत असर पड़ता है।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली।

0: आज जबकि हर एक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।

0: तेजी से बढ़ता, विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता, आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गाँव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट, हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा RPF कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, CPSE केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति, विकसित भारत एट 2047।

0: जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं

और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन,

की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है। और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर

कर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भार का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी
कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं, तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टीयर टू और टीयर थ्री शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में
स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में

अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ है। पहले से जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही है और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका

0: ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा, जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है, आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत की विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है, नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर 513 करोड़ के विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। भोपाल बीएचएल दशहरा मैदान में आज शाम 5 बजे से फिल्म पेदी के म्यूजिकल इवेंट पेदी की आवाज का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान की लाइव परफॉर्मेंस होगी। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप 2026 के लिए घोषित भारतीय टीम में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हमने गीत लिया है फिल्म आंखें से और स्वर है लता मंगेशकर के। गीत लिखा है सुधीर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का। इस गीत को सुनना चाहा है प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, गौतम नगर जिला नांदेड़ से।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में साहिर की लिखी रचना को। धुन बनाई है खयाम ने और फिल्म है कभी कभी। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। इसी गीत को सुनना चाहे छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र वर्मा ने।

कार्यक्रम का अगला और बहुत ही खूबसूरत गीत पसंद किया है श्रोताओं ने। ये गीत है फिल्म धर्मात्मा का और इस गीत को गाया है मुकेश और कंचन ने। शब्द रचना हिंदी वर की और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वंस अपॉन टाइम इन अ मुंबई। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की, शब्द रचना इरशाद कामिल की और प्रीतम की। गीत सुनना चाहा है आपने नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।

0: अदम्य शक्ति
1: एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 10वीं कड़ी।

0: श्रोतागण को मेरा प्रणाम। सभी बच्चे बूढ़े अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर लें, क्योंकि अब शुरू हो रहा है पंचतंत्र की कहानियों का सिलसिला। काकोलुकियम की प्यारी प्यारी कहानियों को आगे बढ़ाते हुए पहली कहानी इस प्रकार है। महिला रौप्य नगर में देवशक्ति नाम का एक राजा रहता था। उनका एक ही पुत्र था, जिसे लेकर महाराज अत्यंत चिंतित रहते थे, क्योंकि राजपुत्र के पेट में एक सर्प रहा करता था। उस उदरस्थ सर्प के कारण उसका स्वास्थ्य क्षीण होता चला जा रहा था।
1: हे ईश्वर, लोग पुत्र धन मांगते हैं, मुझे आपने पुत्र धन देकर भी इस कष्ट को भोगने के लिए छोड़ दिया। हर प्रकार से चिकित्सा करवा चुका हूं, अच्छे अच्छे वैद्यों, शास्त्रीय विधि से निर्मित औषधियां, कितने प्रकार के उपचारों के उपरांत भी राजपुत्र स्वस्थ नहीं हो पा रहा है।

0: मैं जानता हूं पिताजी, आप मुझे लेकर अत्यंत चिंतित रहते हैं। युवा पुत्र मां बाप के दुखों को बांटता है, उनकी चिंताएं दूर करता है, और मैं
1: नहीं पुत्र, नहीं, ऐसे निराश नहीं होते। भगवान इतने निष्ठुर नहीं हो सकते, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। तुम चिंता ना करो पुत्र, तुम चिंता ना करो।

0: मैं जानता हूं पिताजी, आपके हृदय में क्या दुख है। मैं आपको और दुखी नहीं देख सकता। मैं आज ही रात इस महल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा।
1: उसी रात को राजपुत्र ने महल छोड़ दिया। दूसरे नगर में जाकर भिक्षाटन करके वो जीविका चलाने लगा और रात में एक विशाल देवालय में सोकर अपना समय व्यतीत करने लगा। जिस नगर में राजकुमार रहता था उसी नगर का राजा था बलि। उसकी दो कन्याएं युवा हो चुकी थीं। सूर्योदय काल में दोनों प्रतिदिन पिता के चरण स्पर्श करती।
2: प्रणाम पिताश्री।
3: सौभाग्यवती भव।
2: पिताश्री, आपकी ही कृपा से मुझे संपूर्ण सुख भोगने को मिलता है।
3: आयुष्मान भव पुत्री, मेरी कन्याओं को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा।
4: परंतु महाराज, मैं तो अपने भाग्य फल का ही उपभोग करती हूँ, आप तो निमित्त मात्र हैं।
3: दृष्टा, ये तुम्हारा दुस्साहस है। मेरे सम्मुख इतनी बड़ी बात कहने में तनिक भी भय नहीं हुआ तुम्हें?
4: भय? भय कैसा पिता महाराज, ईश्वर ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है। मैं भी सिर्फ अपने भाग्य का ही खाती हूँ।
3: अच्छा, इतना ही विश्वास है तुम्हें अपने ईश्वर पर? मैं भी देखता हूँ भाग्य कब तक तुम्हारा साथ देगा। महामंत्री, इस कटुभाषिणी कुमारी को ले जाकर इसका विवाह किसी परदेसी के साथ करवा दो, जिससे अपने कर्मों का भोग करे। जाओ।
4: जैसी आज्ञा पिताश्री।
1: मंत्रियों ने भी राजकन्या को ले जाकर उसका विवाह उस देवालय वासी राजकुमार के साथ कर दिया। राजपुत्री प्रियंवदा ने भी प्रसन्न मन से उसे पति देवता की तरह स्वीकार कर लिया। उसे लेकर वो दूसरे नगर में चली गई।
4: आइए स्वामी, आइए, आप यहाँ बैठिए। आप यहाँ इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम करें। मैं समीप के बाजार में जाकर कुछ घी, तेल, नमक, चावल लेकर आती हूँ। आप भी भूखे होंगे।
1: वस्तुएं क्रय करके लौटने पर उसने देखा राजपुत्र किसी सर्प के बिल पर सिर रखकर सो रहा है।
4: हे भगवान, ये क्या, स्वामी के मुख से सर्प फन निकाल कर बैठा है। हे ईश्वर, अब क्या होगा। हे भोलेनाथ, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। अरे, इस बिल से तो एक सर्प निकल रहा है। क्या करूं, हे ईश्वर, कैसे स्वामी के प्राण बचाऊं, हे ईश्वर। अरे, ये सर्प तो कुछ बोल रहे हैं।
5: अरे दुष्ट, इस राजपुत्र को तुम इस प्रकार क्यों कष्ट दे रहे हो? निकल क्यों नहीं जाते इसके शरीर से?
6: पापी, इस वृक्ष के विवरण में रखी हुई स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों घड़ों को तुमने क्यों दूषित कर रखा है?
5: दुष्ट आत्मा, क्या तुम्हारी औषधि कोई नहीं जानता कि पुरानी कांजी और काली सरसों को पीसकर गरम जल के साथ पीने से तुम मर सकते हो?
6: तुम्हारी भी औषधि को क्या कोई नहीं जानता? गर्म तेल अथवा खोलते हुए जल को बिल में डालने से तुम मर सकते हो।
4: आज का ये क्षण मेरे जीवन में कितना आनंद दे गया। मैं अभी ये उपाय करती हूँ, मेरे स्वामी स्वस्थ हो जाएंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद है।
1: दोनों सर्प मर गए। धन और स्वस्थ पति को लेकर प्रियंवदा श्वसुर ग्रह लौट गई। इसीलिए कहते हैं, परस्पर विवाद में एक दूसरे के रहस्यों को व्यक्त करने वाले सर्पों की तरह मरते हैं। अब हम सुनेंगे रथकार की कथा। कान्यकुब्ज नगर में वीरवर नाम का एक रथकार अपनी पत्नी कामदमनी के साथ रहता था। कामदमनी व्याभिचारिणी थी। एक बार वीरवर ने सोचा,
7: मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। इसके उल्टा होने की चर्चा तो सुन चुका हूं, आज मैं स्वयं ही इसकी परीक्षा लूंगा।
8: सुनो प्रिय
4: जी, कहिए।
8: कल प्रातः काल मैं समीप के गांव में जा रहा हूं, बहुत आवश्यक कार्य है, इस कारण कई दिन लग जाएंगे। भोजन के लिए कुछ बना दो तो अच्छा रहेगा।
4: अरे वाह, ये तो मेरी मनोकामना ही पूरी हो गई। हाँ हाँ स्वामी, क्यों नहीं, आप निश्चिंत रहिए, परंतु आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। आप अति शीघ्र वापस हो आइएगा, मैं आपके लिए शुद्ध पकवान बनाऊंगी।

0: दूसरे दिन प्रातः काल होते ही वो रत्कार घर से बाहर चला गया। पति को बाहर गया हुआ समझकर कामदमनी ने किसी प्रकार दिन व्यतीत किया। शाम होते ही श्रृंगार कर अपने प्रेमी देवदत्त के पास जाकर बोली,
1: प्रिय।
2: हाँ?
1: मेरा दुष्ट पति किसी अन्य गांव को चला गया है।
2: अच्छा,
1: जब सब सो जाएं तब चुपचाप मेरे घर आ जाना। मुझसे तो अब ये विरह वेदना सही नहीं जाती है।
2: ठीक है, आ जाऊंगा।
0: और इधर की कहानी सुनिए। रथकार घर से तो निकला दूसरे गांव का कहकर, पर वो वन में दिन भर बैठा रहा। शाम होते ही घर के झरोके से प्रवेश कर पलंग के नीचे छिप कर बैठ गया। इसी बीच उसकी पत्नी का प्रेमी देवदत्त भी आकर पलंग पर बैठ गया।
3: दुष्ट अधर्म, जी तो चाहता है अब ही निकल कर इनकी हत्या कर दूं। नहीं, जब दोनों साथ में हों तभी निकल कर इन्हें चौंका दूंगा और एक साथ ही मार डालूंगा।
1: उफ, कब से इस पल की प्रतीक्षा में थी मैं।
2: हाँ, मैं भी।
1: मैं दरवाजे पर सांकल लगा कर आती हूँ।
2: ठीक है।
1: लो, मैं बैठ गई, आप बताओ। अरे अरे, ये मेरे पैर किससे टकरा है? कहीं ये मेरा पति तो नहीं? अवश्य वो मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं अभी बताती हूँ। श्रीमान देवदत्त जी, आप मेरे शरीर का स्पर्श न करें, क्योंकि मैं अत्यंत साध्वी, पतिव्रता एवं महासती हूँ। यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपको श्राप देकर भस्म कर दूंगी।
4: यदि ऐसा ही करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों?
1: सुनिए, आपको यहाँ बुलाने का कारण अभी बताती हूँ। आज प्रातः काल मैं चंडिका मंदिर गई थी।
4: मंदिर? और तुम?
1: मेरी बात सुनो। जी हाँ, मैं देवी दर्शन के लिए गई थी। मेरे वहाँ पहुँचते ही देववाणी हुई। मैं तुमसे कैसे कहूँ, परंतु तुम मेरी भक्त हो, तुम्हें सत्य बताना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य से तुम 6 माह में विधवा हो जाओगे। मैंने देवी से पूछा, भगवती, जैसे आप मेरे ऊपर आने वाली विपत्ति को जानती हैं, उसी प्रकार आप इस विपदा के प्रतिकार को भी जानती होंगी। कृपया मेरे पति के शतायु होने का उपाय क्या है बताएं। देवी बोली, उपाय है पुत्री, परंतु बड़ा कठिन है। तुम्हारे अतिरिक्त इस विपदा का प्रतिकार किसी के भी पास नहीं है। फिर मैंने पुनः निवेदन किया, देवी, देवी, यदि वो उपाय मेरे प्राणों के परित्याग से भी संभव है तो भी मुझसे अवश्य कहिए, ताकि मैं शीघ्र उसे कर सकूं। देवी ने पुनः कहा, यदि तुम किसी अन्य पुरुष के साथ शैया पर उसका आलिंगन करो तो तुम्हारे पति की विपदा उस पर चली जाएगी और तुम्हारा पति शतायु हो जाएगा। हे सज्जन, अब ये आपकी इच्छा है कि आप मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं या नहीं, परंतु ये निश्चित है कि देवी का कथन असत्य नहीं होगा।
4: भद्रे, अगर मैं अपने जीवन का दान कर तुम्हारे जैसी नारी के सिंदूर की रक्षा कर सकूं तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। आओ कामदमनी, आओ।
1: हाँ देवदत्त,
4: आओ।
1: हाँ।
3: हे कामधमनी, तुष्टों के कहने से मेरे मन में तुम्हारे लिए संदेह उत्पन्न हो गया था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं चारपाई के नीचे छिपा बैठा था। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है। तुम पतिव्रत नारियों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि पर पुरुष के साथ रहकर भी तुमने संयम का पालन किया। ये सब तुमने अपने पति की आयु वृद्धि के लिए किया। तुम धन्य हो कामधमनी, तुम धन्य हो।
1: स्वामी, स्वामी आपने मुझे पहचान लिया। धन्यवाद तो इस देवदत्त का करना चाहिए, जिसने सब कुछ जानकर भी मेरा साथ दिया।
3: महाशय, मेरे सत्कर्मों के फलों से आप यहाँ पर आए। आप ही की कृपा से मुझे 100 वर्ष की आयु मिली। आइए, मेरे हृदय से लग जाइए। मैं आज सबको बता दूंगा कि आपने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है।
0: मूर्ख वीरवर, प्रत्यक्ष रूप से पाप करते हुए देखकर भी झूठे समाधान से संतुष्ट हो गया। इन सारी कथाओं को सुनाकर स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को बताया कि दूसरे की बातों से नहीं, स्वयं विचार करके ही निर्णय लेना उचित है। इसके पश्चात स्थिर जीवी ने मेघवर्ण को ये भी बताया कि यदि आप छोटी योनि के हैं, तो समान वर्ग के साथ ही मित्रता या शत्रुता शोभा देती है। एक और कथा भी सुनाई। गंगा के तट पर एक आश्रम था। वहां के कुलपति महर्षि याज्ञवल्क्य थे। एक बार वे गंगा के पवित्र जल का आचमन करने ही वाले थे कि तभी किसी पक्षी के मुख से छूटी हुई एक चूहिया उनके हाथ में आकर गिरी। उन्होंने तपोबल से उस चूहिया को कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे लेकर आश्रम लौट आए। अपनी पत्नी से बोले,
5: भाग्यवान, इस कन्या को ले जाओ। इसे अपनी ही कन्या समझना। प्रयत्न पूर्वक इसका पालन करो। ये ईश्वर का भेजा हुआ आशीर्वाद है।
1: जो आज्ञा स्वामी।
0: समय बीतने लगा।
1: स्वामी, हमारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है। इस कन्या के विवाह का उचित समय आ गया है।
5: देवी, आपने ठीक ही कहा। इसका विवाह मैं योग्य वर से ही करूंगा। यदि आप कहें तो भगवान सूर्य को बुलाकर उनके साथ पुत्री का विवाह करा दूं।
1: ये तो उत्तम विचार है। आप ऐसा ही

0: पुत्री, क्या सूर्यदेव तुम्हें पसंद हैं?
1: तात, ये तो अत्यंत दाहक हैं। मैं इनके साथ विवाह करना नहीं चाहती। आप किसी श्रेष्ठ वर का आह्वान कीजिए।
0: मेघराज सूर्यदेव से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो सूर्य को भी आच्छादित कर देते हैं। मैं उन्हीं का आह्वान करता हूँ।
1: नहीं पिताश्री, मेघराज तो काले हैं। मैं अन्य श्रेष्ठतर से विवाह करूंगी।
0: मेघराज को वायुदेव अपने आघात से छिन्न भिन्न कर देते हैं। पवन देव मेघराज से श्रेष्ठ हैं।
1: पवन देव? नहीं नहीं तात, पवन देव अत्यंत चपल हैं। आप उनसे भी श्रेष्ठ का आह्वान कीजिए।
0: पुत्री, मुझे लगता है पवन देव से श्रेष्ठ पर्वत हैं, जो पवन देव के हिलाए भी नहीं हिलते।
1: पवन देव से श्रेष्ठ पर्वत? परंतु पिताजी, वो तो बहुत ही कठोर और निश्चल है। आप किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति से मेरा विवाह करें तो अच्छा हो।
0: तो फिर पर्वतराज से श्रेष्ठतर तो चूहे हैं, जो अनायास ही पर्वत में भी छिद्र कर देते हैं। तो क्या मूषक राज तुम्हें पसंद है? मैं उनसे तुम्हारा विवाह करा दूं?
1: अवश्य तात, अवश्य। इनसे श्रेष्ठ वर तो त्रिभुवन में कोई हो ही नहीं सकता है। आप मुझे चूहिया बनाकर इनसे मेरा विवाह करवा दें, ताकि मैं गृहिणी धर्म का पालन कर सकूं।
0: तथास्तु, आयुष्मान भव।
2: याज्ञवल्क्य ने ऐसा ही किया। इस कथा को सुनाकर स्थिरजीवी ने मेघवर्ण को बताया कि समान वर्ग या योनि में ही मित्रता या शत्रुता लाभदायक होती है, और वही उचित भी है। इसी कारण इतने सुयोग्य पात्रों को छोड़कर उस मूषिका ने समान योनि के मूषक को ही चुना। एक बार मेघवर्ण के पूछने पर स्थिरजीवी ने कहा, वो दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने की योजनाएं बना रहा है। वहां उलूक राज को उनके ही मंत्रियों के विरुद्ध भड़का रहा है। मेघवर्ण ने उससे पूछा कि आगे क्या होगा और वो शत्रुओं के पास क्यों गया, तो स्थिरजीवी ने बताया,
3: मित्र मेघवर्ण, मैं बस उन्हीं क्षणों की प्रतीक्षा में था। मैंने उनमें फूट डाल दी थी। अब वो उलूक राज अपने ही बंधुओं द्वारा पीड़ित हैं। देखा, मैंने बीच में कार्य को नहीं छोड़ा।
4: तात, आपका कथन यथार्थ है। महान व्यक्ति विपत्तिग्रस्त होते हुए भी आरंभ किए हुए कार्य को विघ्न के भय से नहीं छोड़ते। आपने बुद्धि के द्वारा मेरे शत्रु का विनाश करके मेरे राज्य को निष्कंटक कर दिया है। मैं अत्यंत भाग्यवान हूँ।
3: नहीं महाराज, भाग्यवान तो मैं हूँ। आपके सानिध्य में किया हुआ कार्य स्वयं ही सिद्ध होता चला गया। जो कार्य विचार और बुद्धि से किया जाता है, वो विजयकारक होता है।
4: नीति शास्त्र निश्चय ही फलकारक होता है। नीति शास्त्र के बल से ही आप मेरे शत्रु अरिमर्दन के विश्वस्त एवं अनुकूल बन गए, और उसके गुप्त भेदों को जानकर उसे सपरिवार विनष्ट कर दिया।
2: और इस प्रकार एक दूसरे का धन्यवाद कर दोनों ने कृतज्ञता स्वीकार की।

आज काक और उलूक की कथा समाप्त हुई। काकोलुकियम के पश्चात हम सुनेंगे लब्ध प्रणाश। अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय, तब तक के लिए नमस्कार।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। यह उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। नीट पेपर लीक मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। सीबीआई ने इस कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे की एक फिजिक्स टीचर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार करीब 36 लाख रुपए तक की मदद देगी। इसके लिए 25 मई शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

0: समय की कद्र जो करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, हर प्रयास सफलता देता है। इस विचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, भारत एक विकासशील देश है जहां आज भी कई क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं मौजूद हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम पोषण योजना, जो पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके और वे नियमित रूप से विद्यालय आए। बहनों, इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे कि कुपोषण को समाप्त करना। बहनों, बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। इस योजना के माध्यम से उन्हें संतुलित आहार प्रदान किया जाता है और जब बच्चों को स्कूल में भोजन मिलता है तो उनकी उपस्थिति बढ़ती है और गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होते हैं। पौष्टिक भोजन से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। सभी बच्चों को एक ही स्थान पर भोजन मिलने से समानता की भावना भी विकसित होती है और भोजन में चावल, दाल, सब्जियां, फल भी शामिल होते हैं। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहनों, पीएम पोषण योजना के अनेक लाभ हैं, जिनका प्रभाव समाज और बच्चों दोनों पर पड़ता है, जैसे बच्चों का स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा में सुधार, गरीबी में राहत, बाल श्रम में कमी और सामाजिक विकास। बहनों, पीएम पोषण योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर करते हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग इनकी निगरानी करते हैं ताकि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। पीएम पोषण योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना की भूमिका निभा रही है। यह न केवल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य को भी सुधारती है और शिक्षा को भी बढ़ावा देती है। यदि इस योजना को सही ढंग से और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो भारत सरकार में कुपोषण और अशिक्षा की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार पीएम पोषण योजना देश के बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाली एक मजबूत योजना है। बहनों, गीत संगीत जो सभी के दिलो दिमाग को तरोताजा करते हैं, तो आइए सुनते हैं गीत दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है ज्वार भाटा।
1: ये समझो और समझाओ, होली में मौज मना।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम ज्वार भाटा। बहनों, भारत की प्रसिद्ध प्रसारण संस्था आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती सरिता सलील जी, जो एक वरिष्ठ कवियत्री हैं। आपने पिछले 45 वर्षों से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना और सराहा है। सरिता जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
1: सरिता जी, आपके जीवन में आकाशवाणी का क्या महत्व रहा है?
2: आकाशवाणी महत्व तो वही बता सकता है जो उसे सुनता है, और मैंने तो बचपन से ही रेडियो को सुना है, तो मेरे ऊपर तो काफी उसका प्रभाव भी पड़ा है और उसका महत्व भी मैंने जाना है कि आकाशवाणी को सुनने से कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारे अंदर कितने परिवर्तन आते हैं, और वो शायद हम नहीं जान पाते लेकिन सामने वाला व्यक्ति जरूर जान जाता है जो हमसे रूबरू होता है, क्योंकि हम उसको रेडियो को सुनकर उसकी भाषा शैली, उसकी प्रस्तुति, गीत संगीत, समाचार और बहुत सी ज्ञानवर्धक चीजें, लोक संस्कृति, कहने का मतलब कि हमारे जो व्यक्तित्व विकास में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है, वो हमें आकाशवाणी से यानी रेडियो से मिलती है। जी
1: अच्छा, सरिता जी, क्या आपको बचपन में रेडियो सुनने की कोई विशेष याद आज भी याद है आपको, कि आपने कोई विशेष प्रोग्राम सुने हैं?
2: जी, कल्पना जी, बिल्कुल याद है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती थी, क्योंकि बचपन से ही मैं रेडियो सुनती थी, और मेरे पापा सुबह से यानी जब से सभा शुरू होती थी और रेडियो शुरू कर देते थे, तो जो मंगल ध्वनि वगैरह जो बस्ती में शुरू में उनसे हम लोगों की शुरुआत होती थी दिन की, और चूंकि स्कूल में पढ़ते थे तो उसी के साथ हमको जगाया जाता था, और बिस्तर छोड़ते छोड़ते मालूम है कल्पना जी हम लोगों को 6:35 हो जाते थे कि जब रामचरित मानस आने लगा।
1: अच्छा
2: जी, और उसके बाद हम लोग दौड़ लगाते थे जल्दी से तैयार होना है क्योंकि 7 बजे फिर स्कूल भी जाना है, और स्कूल जाते जाते जैसे ही 7:10 या 7:05 पर जो प्रादेशिक समाचार आते हैं उसकी वो संकेत ध्वनि बजती है और हम लोग स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। मतलब कि बचपन ही मेरा जो है रेडियो से ही

0: हर किसी को इसका लाभ दिया। बचपन का किस्सा थोड़ा सा और सुनाना चाहूंगी, क्योंकि ये बात जब 7 बजे जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो उसके बाद जब घर लौटे और उसके बाद रात में क्या होता था, शाम को खेलने के बाद हम लोग 7 बजे पढ़ने के लिए बैठा दी, और जैसे ही 8:45 पर दिल्ली से समाचार आते थे और पापा हमारे समाचार सुना करते थे, तो हम लोगों के कान लगे रहते थे कि जैसे ही समाचार शुरू हुए मतलब कि 9:15 बज गए और हम लोगों के बच्चे बंद, मतलब पढ़ाई खत्म, अब खाने का टाइम,
1: अब खाने का टाइम हो गया।
0: और पापा क्या करते थे, मतलब एक मधुर स्मृति है ये, हम लोग हमेशा बैठते हैं तो याद करते हैं कि पापा उस समय थोड़ा सा रेडियो की आवाज धीमी कर देते थे कि बच्चे अभी जल्दी सो जाएंगे, तो धीमा कर देते थे, तो हम लोगों के काम वही लगे रहे कि अब जो है
1: शुरू।
0: ये बहुत ही मधुर स्मृतियां हैं, बहुत ही सुखद यादें हैं बचपन की रेडियो से जुड़ी हुई, वही बताना चाह रही थी आपको।
1: अच्छा सर, सर ये 90 वर्षों की इस यात्रा को आप किस प्रकार देखती हैं?
0: देखिए कल्पना जी, सबसे पहले बहुत ही गर्व और खुशी की बात है ये कि एक 90 वर्ष की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुनहरी, बहुत ही यादगार यात्रा जो है यहाँ तक आ पहुंची है, और हम सभी के अनुभव के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग भी आज उस उम्र में आ गए हैं कि एक लगभग 40-45 साल से हम रेडियो को सुन रहे हैं। अब तो देश की संस्कृति को, ज्ञान विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो रेडियो ने निभाई है, क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ पर हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग कार्यक्रम थे। बच्चों के लिए जैसे बाल मंडली होती है, बाल सभा होती है ना, और किसानों के लिए होता है हमारे यहाँ कार्यक्रम, महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं का अलग है, शहरी महिलाओं का अलग है, और युवा श्रोताओं के लिए युववाणी है, तो इस तरह से हर एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही सकारात्मक भूमिका हमारे इस 90 साल की यात्रा में लोगों ने उसे महसूस किया है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में वो निखार आया है ये सब सुन सुन के।
1: अच्छा सरिता जी, ये मतलब एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, क्या आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की उपयोगिता बनी हुई है, और बनी है तो क्यों बनी है?
0: बिल्कुल, दरअसल क्या है कि अगर हम इस यात्रा में कुछ नया भी जोड़ना कर शुरुआत करें, कुछ नए विषय, कुछ आधुनिक तकनीक
1: जी
0: है ना, इसके साथ अगर हम बहुत सारी खरीदों प्रस्तुत करने लगे और भीड़ भी जा रही है, ऐसा नहीं है, तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी आकर्षित होगी और इसको और भी कहते हैं ना कि पंख मिलेंगे और उड़ाने मिलेंगी आगे, नई मंजिलें, नए उनको सोचने के लिए विकास होगा, सोचने की क्षमता में विकास होगा, है ना, तो हर तरफ जो है उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही लाभदायी होगा। और कल्पना जी, आकाशवाणी का एक सबसे बड़ा महत्व मैं अंत में बताना चाहूंगी तो ये है कि रेडियो सुनते वक्त हमें किसी एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठना पड़ता।
1: सही बात,
0: कहने का मतलब कि मैं हम अपने दैनिक कार्य करते भी रहते हैं और रेडियो सुनते भी रहते हैं।
1: सही बोल रहे हैं,
0: ये और साधनों में ऐसा नहीं होता और माध्यमों में ऐसा नहीं होता, लेकिन रेडियो के साथ सबसे बड़ा सकारात्मक जो वो है बिंदु वो ये है कि इसके साथ हम अपने काम भी करते रहते हैं और हम गाने भी सुनते रहते हैं, समाचार भी सुनते रहते हैं और अपनी लोक संस्कृति का भी ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा महत्व रेडियो का ये है आज के दौर में।
1: सरिता जी, आप कवित्री भी हैं, जानी तानी हस्ती भी हैं, तो जैसे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर हम आपकी कविता के माध्यम से आप आकाशवाणी को कोई शुभकामनाएं दीजिए या संदेश दीजिए, जिससे हमारी बहनों को भी प्रेरणा मिले या उनको भी अच्छा लगे।
0: शुभकामनाएं तो मेरी है ही, लेकिन चूंकि ये महिलाओं का कार्यक्रम है
1: जी,
0: तो मैं महिलाओं के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी
1: जी,
0: अपने काव्यपाठ के रूप में
1: जी।
0: सभी राधा बनी संग रास ही करने चली आई, सभी राधा बनी संग रास ही करने चली आई, कभी लक्ष्मी बनी मैं घर तेरा भर।

0: सावनी और पाप को हरने चली आई, कभी गंगा बनी और पाप को हरने चली आई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी।
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सरिता जी।

0: मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं आशा करती हूँ हमारी बहनों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो श्रद्धा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: बहनों, भारत सरकार ने फरवरी 2026 में HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर से लॉन्च किया गया। बहनों, भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सर्वाइकल कैंसर। यह बीमारी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होती है। इस कैंसर से हर साल हजारों महिलाएं प्रभावित होती हैं। इसी समस्या से बचाव के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ दिनांक 28 फरवरी 2026 स्थान अजमेर राजस्थान से किया गया। बहनों, इसका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना और आने वाली पीढ़ी को कैंसर मुक्त भारत की दिशा में सुरक्षित बनाना है। यह टीकाकरण सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त उपलब्ध है। बहनों, यह टीकाकरण महिलाओं की मृत्यु दर कम करने में सहायक और लंबी अवधि की सुरक्षा प्रदान करता है। बहनों, HPV टीकाकरण अभियान भारत की बेटियों के लिए एक जीवन रक्षक पहल है। यह न केवल सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। यदि यह अभियान सफलतापूर्वक लागू होता है तो आने वाले वर्षों में भारत को कैंसर मुक्त समाज बनाने में मदद मिलेगी। बहनों, आइए सुनते हैं गीत सर्दी खांसी न मलेरिया हुआ। फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन, जिसे गाया है कुमार शानू, अलका याज्ञिक, जूली।

बहनों, अभी हमने सुना गीत सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, जिसे गाया था कुमार शानू, अलका याग्निक, जूली मुखर्जी ने, और फिल्म का नाम राजू बन गया जेंटलमैन। बहनों, सौंफ का शरबत एक पारंपरिक और स्वास्थ्य वर्धक पेय है, जिसे विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में पिया जाता है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, जिसे यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। भारत में पुराने समय से ही सौंफ का उपयोग भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर और औषधि के रूप में किया जाता रहा है, और इसी सौंफ से बना शरबत स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है, और इसके लिए आवश्यक सामग्री है सौंफ, पानी, चीनी, नींबू का रस, काला नमक, साधारण नमक और बर्फ के टुकड़े। इसको बनाने की विधि है, सौंफ को एक कप पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। इससे सौंफ नरम हो जाती है। इसके बाद भींगी हुई सौंफ को उसी पानी के साथ मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। इस तरह से एक मुलायम पेस्ट बन जाएगा। अब इस पिसे हुए मिश्रण को छन्नी या साफ कपड़े की सहायता से छान लें। अब इस अर्क में पानी डालें और उसमें चीनी मिलाएं। चीनी को अच्छे से घुलने तक चलाते रहें। इसके बाद काला नमक, साधारण नमक डालें, जिससे शरबत का स्वाद और भी बढ़ जाता है, और अंत में नींबू का रस मिलाएं, जो शरबत को हल्की खटास और ताजगी देता है। और अब इसमें बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा ठंडा परोसें। बहनों, सौंफ का शरबत ठंडा ही अच्छा लगता है। इसे आप गिलास में डालकर ऊपर से पुदीने के पत्तों से सजाकर मेहमानों को परोस सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि दिखने में भी आकर्षक लगता है। बहनों, इस शरबत के अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि सौंफ शरीर को ठंडक प्रदान करती है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है, पेट की गैस और जलन को कम करती है, मुंह की बदबू को दूर करने में सहायक होती है, गर्मियों में लू से बचाने में मदद करती है। बहनों, सौंफ का शरबत एक सरल, सस्ता और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पेय है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से घर पर बना सकता है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रहता है। बहनों, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दुनिया को जिन्होंने अहिंसा का मंत्र दिया वो थे महात्मा गांधी।
2: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
1: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं नित्यानंद द्विवेदी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत विकास गीत से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं नित्यानंद द्विवेदी के गाए कुछ लोग।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है सुगम संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्रकाश तिवारी की गाई गीत और भजन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम के अंत में प्रकाश तिवारी का गाया ये भजन।

0: प्रकाश तिवारी के गाय इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अभी आपने सुना मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में। शब्द रचना थी मजरू की और संगीत ओपी नैयर का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए आर पार फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू की है और संगीत भी ओपी नैयर का ही है।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए भरोसा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत रवि का।

0: भरोसा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
1: साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा, यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा

0: आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। पूरे देश से चुने गए यह नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। वह यहां जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और भव्य सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे और भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में सम्मिलित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री NTPC में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान जिले के विकास के लिए 513 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में तीव्र लू को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं ग्वालियर सहित 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल प्रदेश के 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों से लू से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपना कर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। शोध के अनुसार प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्पिल्ट एसी की ऊर्जा खपत में 6% की कमी आती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आगरमालवा जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर जल स्रोत पूजन एवं कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। शिवपुरी जिले में विकासखंड कोलारस, नरवर, पिछौर, खनियाधाना समेत अन्य स्थानों पर जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर जल स्रोतों के बचाव को लेकर जागरूक किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें।

0: श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी।

0: बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज का जो पहला गीत है, जिसे हमने लिया है दबंग फिल्म से, आवाज़ राहत फ़तेह अली खान की, शब्द रचना फैज़ अनवर की और संगीत साजिद वाजिद का। और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और विशाल भट्टा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से इस गीत को पसंद किया है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है संदलपुर ग्वालियर से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव, उर्मिला देवी की, तो इन सब की पसंद का गीत सुनते हैं दबंग फिल्म से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, इसी गीत को पसंद कर रहे हैं सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हरदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोदरा, मुश्तवा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सब सुनना चाहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले और साथियों ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत आर डी बर्मन का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत।

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अब सुनिए अनाड़ी फिल्म का गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। शब्द रचना है समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, उपाध्याय नगर देवास से मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, कमल निगम, कोटवा नारायणपुर बलिया से इस गीत को पसंद कर रहे हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और सरोजनी और कुंती साहू। तो आइए इन सब की पसंद का गीत सुनते हैं फिल्म अनाड़ी का उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में भी आपने सुना अनाड़ी फिल्म का गीत, शब्द रचना थी समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोतरा, मुजातबा खान, राउब भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। आप सबकी पसंद का गीत सुनिए जिसे हमने लिया है मुंबई का बाबू फिल्म से। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ है, शब्द रचना मजरू की और संगीत एच डी बर्मन का।

बम्बई का बाबू, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में अभी इस फिल्म का गीत आपने सुना। शब्द रचना मजरू की थी और संगीत ST बर्मन का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं पाकड़ू झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु भगत, किसु तासु। सारणी जिला बैतूल से इस गीत को पसंद कर रहे हैं अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाग, पंजाबराव निम्बाड़कर और संदीप पाटिल। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है पटेल नगर मालोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। और घंटाघर चौक खंडवा से इसे पसंद कर रहे हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबने पसंद किया है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ में हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत। शब्द रचना देव कोहली की है और संगीत राम लक्ष्मण का।

0: हम आपके हैं कौन, इस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर हैं। वह यहां 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे और सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिर है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ईंधन न खरीदें और केवल जरूरत के मुताबिक ही खरीदारी करें। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ है कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। शोध के अनुसार प्रत्येक डिग्री तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्पिल्ट एसी की ऊर्जा खपत में 6% की कमी आती है। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविंद्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का चौथा भाग। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। रात 8:00 सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे विज्ञान भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए चंगन सेरी सीपी माधवन नंपुथरी का कर्नाटक गायन। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 और 3 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी।

सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर हैं। वह यहां 513 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे और सिंगरौली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से 15 जून तक नागरिक प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविंद्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है, जिसमें पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपनी ऊर्जा, नवाचार, तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव हैं। देश के विकास और विकसित राष्ट्र के निर्माण में युवा शक्ति का योगदान कई प्रमुख क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सबसे पहले नवाचार और उद्यमिता। आज के युवा तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में नए स्टार्टअप के जरिए आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं। दूसरा, कौशल विकास और शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नए जमाने के कौशल को अपनाकर युवा देश की उत्पादकता और कार्यबल की क्षमता में भारी वृद्धि कर रहे हैं। ये सामाजिक और नागरिक दायित्व भी बखूबी निभा रहे हैं। एक विकसित राष्ट्र के लिए सामाजिक समरसता, समानता और पर्यावरण संरक्षण पर भी काम कर रहे हैं। युवा सामाजिक बुराइयों को मिटाने, स्वच्छता अभियान और सामुदायिक विकास में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, हमारी युवा पीढ़ी डिजिटल माध्यमों से सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और आधुनिक सेवाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है। दोस्तों, युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनकी ऊर्जा, नवाचार और सकारात्मक दृष्टिकोण देश को आगे बढ़ाने में सहायक है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत हेमा सरदेसाई की आवाज में, चक दे इंडिया फिल्म से।

दोस्तों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम लाया गया है। ये कार्यक्रम सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले विभागों की विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य 6 केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समान अवसर मिले और वो समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। इसके व्यापक उद्देश्य हैं शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता और राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है, सांप्रदायिक द्वेष और हिंसा की रोकथाम और उसमें नियंत्रण करना। दोस्तों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए पहल सहित कल्याणकारी योजनाएं जिन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है वो हैं एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जिसमें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, योग्यता सह संसाधन आधारित छात्रवृत्ति योजना आदि शामिल हैं। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना, गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिवृद्धित ऋण सहायता, राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजना, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास जैसी योजनाएं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत सौतन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्तंभ रोजगार समाचार की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए लगभग 7,150 पदों पर रिक्तियां उपलब्ध हैं। आवेदक की उम्र 20 से 28 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। अधिक जानकारी के लिए www.sbi.com.in पर देख सकते हैं। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है। कुल पद हैं 5,000। आवेदन करने की तिथि 19 मई से शुरू होकर 19 मई आवेदन करने की तिथि 19 मई 2026 से 1 जून 2026 है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत विवाह फिल्म से, श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी
1: हाँ।
0: और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: आप लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए, चलिए।

0: दोस्तों, हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो चलिए युवा श्रोता राज त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सुनते हैं।
1: नमस्कार, मैं राज त्रिपाठी। मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता रहता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। ये कार्यक्रम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए लगते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, ग्रामीणों के खेती किसानी की जानकारी और देश विदेश की खबरें सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा संगीत और स्थानीय बोलियों के कार्यक्रम लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। किसानों और ग्रामीणों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बहुत उपयोगी होते हैं। मौसम की जानकारी, फसल उगाने के लिए तरीके और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी लोगों को काफी पसंद आती है। हमारी बघेली बोली में भी कार्यक्रम सुनाए जाते हैं। लोकगीत, सुगम संगीत, फिल्मी गीत, गजलें भी सुनाई जाती हैं, जिससे मनोरंजन होता है।
0: दोस्तों, अब करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये गीत दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है uvadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपने रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
2: डीडी डायरेक्ट
1: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
0: ये आकाशवाणी का शुभ

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम माफ कीजिएगा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज में, फिल्म जुबैदा।

के आर रहमान का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म जुबैदा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान की आवाज में। फिल्म का नाम है प्यार में कभी कभी।

विशाल श्राद्ध सम्राट का संगीत, साथ ही विशाल और राज कौशल के लिखे बोल। शान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म प्यार में कभी कभी से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शंकर महादेवन की आवाज में। फिल्म का नाम है मिशन कश्मीर।

शंकर एहसान लॉय का संगीत समीर के लिखे बोल, शंकर महादेवन की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म मिशन कश्मीर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान और सुनीता राव की आवाज में फिल्म अशोका से।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसानवाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली दौरे पर हैं। उन्होंने बैड़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन किया। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से 15 जून तक नागरिक प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर होगी। स्वर्णिम 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल आज शाम 7 बजे रविंद्र भवन में संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है, जिसमें पुष्पलता शर्मा लोकगीत और उस्ताद मुनव्वर मासूम कव्वाली पेश करेंगे। और आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। और कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अलीशा शेनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज में फिल्म बंटी और बबी।

के लिखे बोल जावेद अली, शंकर महादेवन और अलीशा चिनॉय की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म बंटी और बबली से। फिल्म संगीत में अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है अजनबी।

अनु मलिक का संगीत, समीर के लिखे बोल, अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अजनबी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ताल।

यार रहमान का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ताल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म का नाम है पुकार।

आर रहमान का संगीत, जावेद अख्तर के लिखे बोल, कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म पुकार से। कार्यक्रम फिल्म संगीत का है और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल से।

ए आर रहमान का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दिल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सोनू निगम की आवाज़ में, साथ है हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। फिल्म का नाम है परदेस।

नदीम श्रवण का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल हेमा सरदेसाई सोनू निगम और शंकर महादेवन की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म परदेश से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा श्रीराम की आवाज में फिल्म लच्चा से।

अनु मलिक का संगीत, समीर के लिखे बोल, अनुराधा श्रीराम की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म लज्जा से। कार्यक्रम का अंतिम गीत अब आपको सुनवा देते हैं फिल्म सुनिधि फिल्म नायक से। आवाज है सुनिधि चौहान और

0: ए आर रहमान का संगीत हनबख्शी के लिखे बोल, सुनिधि चौहान और हंसराज हंस की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म नायक से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
0: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानो भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित

0: अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिएगा रात 8 बजे। कार्यक्रम विज्ञान भारती प्रसारित होगा रात 9:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा चंगनसरी सीपी माधवन नंबूथरी का गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने प्रसारित होगा कल दोपहर 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की 11वीं कड़ी सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 1 बजे। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम और सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 1:45 पर। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगे। आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति बच्चों का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनवाया जाएगा कल रात 8 बजे। 8:15 पर सुनेगा इंदौर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की। विषय होगा जल जीवन मिशन। 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अखिल भारतीय रविवासी संगीत सभा में कल रात 10 बजे सुनिएगा पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आज रात 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा प्रसारित किया जाएगा। 7:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर और 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनवाए जाएंगे रामचरण यादव और साथियों द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहांट सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी सुनवाई जाएगी सुबह 10 बजे। कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षण पाठ प्रसारित होगा कल सुबह 10:05 पर। कल रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत रात 7:20 से प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहां ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य विषय पर श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेष विशेषज्ञ डॉक्टर के नेमा। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 24 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोनन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम के लिए विषय है ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वो दिनांक 24 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर

2660902 या 2660903 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार फिर से सुने। दिनांक 24 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य। फोन नंबर है 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का मसौदा नियम प्रकाशित किए। और नौतपा से पहले ही प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, 31 मई तक और बढ़ेगा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्म योगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में आयोजित कार्यक्रम में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का पर भी प्रकाश डाला।
2: सिंगरौली की पहचान केवल कोयले से नहीं।

0: और आज भी आपका ये सौभाग्य अगर किसी का तो सिंगरौली का है, और अब तो रेल भी चल रही।
1: डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन किया। यह अत्याधुनिक खेल परिसर क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रतिभाओं को निखारने एवं खेल संस्कृति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सिंगरौली महोत्सव एवं नगर गौरव दिवस के आयोजन में भी सहभागिता करेंगे। यह 23 मई से 25 मई तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री संपतिया उनके राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रति दिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री आज शिवपुरी में आयोजित भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। श्री सिंधिया ने सोशल मीडिया पर चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर तंस कसते हुए कहा कि राजनीति ट्रेंड से नहीं बल्कि जनता के बीच काम करने से चलती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत आगर मालवा जिले में 4 कृषि रथों के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, शासकीय योजनाओं एवं कृषि आधारित नवाचारों की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कल जिले के ग्राम निपानिया, बैजनाथ, मालीखेड़ी, कंकडेल, रामनगर, जयसिंहपुरा सहित विभिन्न पंचायतों में तकनीकी टीम द्वारा किसानों को कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों की जानकारी दी गई। अभिनेत्री और मॉडल त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने त्विशा के पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को आज भोपाल जिला अदालत में पेश किया, जहाँ से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की थी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया के तहत शहडोल जिले में मकान सूचीकरण और नंबरिंग का काम अपने अंतिम दौर में है। जिले में अब तक 97% काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए

टीम ने कटनी जिले के विकासखंड विजय राघवगढ़ के गांवों का भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं के ANC पंजीयन, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। देवास जॉब पोर्टल के माध्यम से वेल्सपन लिविंग लिमिटेड द्वारा 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर देवास में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ में गंगा दशहरा पर 25 मई को जिले में जल संरक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैतूल जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 112 संतृप्ति शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम समय बारे सभी भैया बहनों को धर्मू की और संग में रूबी बहन आपको भी हमारी राम राम।
1: राम राम धर्मू भैया और सगाई कार्यक्रम समय बारे भैया बहनों को सही हमारी राम राम।
0: और भैया देखो आजकल पड़ रही है गर्मी,
1: गर्मी तो भैया ही पड़ रही है
0: और दिन में दोपहिया में बहुत तेज धूप पड़ रही है। तो हम तो यही कहेंगे सब भैया से सबसे पहले तो कि भैया अपन दिन में ना निकले, जरूरी काम है तो भैया निकले, वो भी बांध के अपाई अंगोछा आखन में चश्मा है ना। और भैया जहाँ तक हो सके वहां तक अपन पानी पियत रहे तरल पेय पदार्थ।
1: और भैया एक और बात अपन भैया से कहेंगे, भैया घर से जब निकले तो खाली पेट बिल्कुल ही ना निकले।
0: हाँ, वो तो
1: खा पी के निकले
0: और पानी की बोतल
1: संग एक पानी संग में रखे, जैसे कहा कि जरूरत पड़े पर पानी
0: पियत रहे। और बोतल पे हो सके तो भैया टाट लपेट ले और बाहर गीलो कर ले तो वो ठंडो बनो रहेगा। और जहाँ भी पानी की व्यवस्था मिले वहां अपन भर सकते हैं। जगह जगह पे भैया सब जगह भैया प्याऊ भी लगी भैया जा समय, बहुत लोगों ने भैया प्याऊ की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो अपन है ना शहर में आते हैं कछु सामान सट्टा लेवे तो अपन भैया प्याऊ से अपनी अपनी बोतल भी भर लें और पानी भी पियत रहे,
1: पानी पियत रहे। और भैया देखो जैसा मैं पड़ रही है गर्मी तो अपन को जो भी ध्यान रखना है कि अपन जो है अपने आस पास स्वच्छता रखें, स्वच्छ पानी पिए और अपने जो आस पास को वातावरण है बाय भी स्वच्छ रखें।
0: अब बाय स्वच्छ रखवे के लाने भैया देखो अपन को सबसे पहले अभी से तैयारी करनी है पेड़ पौधा लगावे की, है ना।
1: हाँ।
0: क्योंकि अभी से अपन गड्ढा खोद के तैयार कर लें, बामे अपन मिट्टी खाद सब भर के बाहर तैयार रखें, जैसी पानी बरसन लगे और जब वो गड्ढा में पानी भर जाए तब अपन बामे पौध रोपण करें।
1: और भैया देखो एक तो ये तो पेड़ पौधा तो अपन के लाने लगाने ही, संगे ही भैया अपन जो कचरे घर को कचरा निकला था बाको निपटान सही तरीका से करना है।
0: बाको भैया कचरा दान में ही अपन डाले। हाँ। कचरा जो कूड़ा दान होता है भैया बाहर में डालें, गीलो गीलो में डालें, सूखा सूखा में डालें
1: और बाको सही
0: और निपटान करें, ना फेंके
1: सड़क पे इतने होते ना फेंके। जो बड़े बड़े आजकल क्या है कि जो नगर पालिका वाले होते हैं
0: सरकार गाड़ियां आते हैं
1: नहीं तो एक जगह निश्चित कर दी जाते हैं तो वो वहां पे डालें और अपन साफ सफाई रखें।
0: हाँ, जैसे अपन सिंगल यूज प्लास्टिक होता है ना
1: बाको
0: इस्तेमाल, हाँ बिल्कुल ना करें भैया, क्योंकि वो है ना अपनी जमीन को बंजर कर रही है, यानी कि वो जमीन में जाके ना तो वो गलत है ना सड़त है और जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है पोषक तत्व वो और नष्ट कर देते हैं,
1: वो नष्ट करते हैं अपने पर्यावरण को, जो मान लो कि वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो भैया जब आप पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं हुए तो आप जीवन कैसे सुरक्षित होगा। तो जय के लाने अपने लाने हमेशा ऐसे प्रयास करने हैं जैसे कि आप जो पर्यावरण है वो अच्छो और सुरक्षित बने, स्वच्छ बने।
0: देखो हवा में अपन को भैया जो को कैसी भी किसी भी तरह से अपन को है ना कारखानों की जो अब गाड़ियों की जो सब धुआं निकला थे प्रदूषित करा थे, तो इन धुआं से अपनों को बचने हैं। अपन सुबह सुबह खुली हवा में ऐसी जगह वातावरण में जाए जहाँ पे पेड़ पौधा अधिक लगे हों और खुली जगह हो।
1: और सबसे पहले तो भैया अपन के लाने जो ही प्रयास करना है कि अपन है ना ऐसे कोनो भी काम ना करें जैसे कि अपन पर्यावरण को नुकसान हो। जैसे कि अब आपने बात करी वाहन से धुआं निकला था तो हाँ। भैया ज्यादा पुराने वाहन हो जिनमें से जो ज्यादा धुआं छोड़ा तो
0: उनको
1: इस्तेमाल बंद कर दें या इनको ठीक करवा लें,
0: करा लें उनकी मरम्मत करा लें भैया।
1: और एक और बात भैया कि जो खुले में जो शौच आजकल जो गांव में ज्यादा ही हाँ। वैसे तो शहर में बंद होगा, गांव में ही बंद होगा पर कछु कछु ऐसी जगह है जहाँ पर है
0: चल रहा है लेकिन भैया
1: तो से मुक्ति पानो है।
0: हाँ, क्योंकि शौचालय तो भैया सब जगह बनवा दे हैं सरकार ने। हाँ। और शौचालय बनवे से लेकिन अब कछु लोगों ने तो कर लो शुरू कर दो पाओ इस्तेमाल कर वो, लेकिन कछु लोग नहीं कर रहे हैं।
1: अबे नहीं कर रहे हैं तो उनसे यही कह वो है कि जो शौचालय को
0: इस्तेमाल करें क्योंकि हाँ। गंदगी अपने घर तक आते हैं,
1: आते अपने पर्यावरण को खराब कर रहे थे और उसे ही अपन बीमार पड़ा थे,
0: बीमार पड़ रहे हैं।
1: इससे कहा है कि भैया देखो आप जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा अधिक अपने पेड़ पौधन पर निर्भर कर रहे थे तो पेड़ पौधा लगाने हैं और जो समय बहुत ही अच्छो है पेड़ पौधा लगावे के लिए तैयारी करवे को अपन गड्ढा खोद लेंगे।
0: अपन
1: वो गड्ढा में कहा है कि जो भी अपन को खाद पानी डालना है अच्छे से
0: तैयार
1: तैयार हो जाएगा
0: और अपन है ना पौध की तैयारी कर लें।
1: जैसे ही पानी पड़े अपन जो है वहाँ में
0: पेड़ पौधा
1: लगा दें और जैसे कहा होगा कि भैया देखो अपन पेड़ पौधा लगा देंगे तो अपन के लिए वहाँ में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी
0: क्योंकि बरसात में
1: हाँ,
0: पौधा बहुत जल्दी
1: बढ़ाते हैं।
0: हाँ, जल्दी पेड़ की जड़ पकड़ाते हैं और जल्दी बढ़ाते हैं और उसकी भैया सुरक्षा कर दे चारों तरफ से जिससे कि अपने जो पशु है वो ना खा पाए।
1: और भैया जब अपन आज अगर अपन पेड़ पौधा लगाएंगे तो अपनी जो आवे वाली पीढ़ी ये बाके लाने अपन एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण
0: दे सकते हैं भैया। और वो पीढ़ी भी ये कहेगी कि देखो आज अपाओ भारत देश चारों तरफ से हरो भरो
1: हरो भरो है ना। और भैया देखो, अपन बात कर रहे हैं पेड़ पौधा लगावे की, और अपन संग ही कर रहे थे खेती, तो भैया खेती में भी अपन ऐसे काम कर सकते हैं जामे के अपन मेड़न पे पेड़ पौधा लगा सकते हैं ना,
0: लगा सकते हैं जहाँ ट्यूबवेल है, हेडपम्प है, कुआ है, आस पास अपन कुआ से पानी दे तो वहाँ भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखो भैया, अपन जब भैया में जब अपन कहीं भी आराम करे तो पेड़ की छांव देखा
1: था, सही कह रहा भैया,
0: तो फिर और छांव में बैठ के अपन को कितने का आराम मिलाते हैं।
1: और जितने भैया पेड़ होते हैं उतने भैया वो जो धरती होते हैं पे नमी बनी रहते हैं नीचे धरती में। और भैया कहा है कि देखो देखो अपन
0: तापमान भी कम रहते पेड़ के,
1: अपन
0: नीचे
1: पेड़ पौधा लगाएंगे तो जहाँ में कहा है कि अपन फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। जैसे कहोगे जो अपन खेती है वहां में अपन के लाने सहायता मिलेगी, कैसे कि अगर अपन एक ही तरह की खेती करते हैं तो बासे अपनी जो माटी है बाकी उपजाऊ क्षमता घटत जाते है। हाँ। तो जय के लाने अपन को फसलन में क्या करना है, विविधता लाना है। विविधता लानी है, विविधता कैसे कि जैसे कि अपने पास जितने धरती है तो उसमें अलग अलग रकबे में अपन अलग अलग तरह की खेती कर
0: फसल कर। हाँ,
1: जैसे अनाज वाली फसलें करें कछु रकबा में, कछु रकबा में अपन दलहनी कर ले,
0: और जैसे कि भैया फसल की जो अपनी जमीन की मिट्टी है ना वो उपजाऊ और पोषक तत्व बाकी बने रहेंगे।
1: और जैसे भैया कहो होते कि जैसे मान लो एक अपन ने एक फसल करी बा में अपन के लाने अच्छो फायदा नहीं मिला तो जाकी भरपाई अपन दूसरी फसल से कर सकते हैं। और जय के संगे अपन जो है जैसे जो खेती से जुड़े हुए कार्य होते हैं वे भी कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं। और पशुपालन में देखो एक तो बकरी पालन है और जो अपन गाय भैंस तो पालती है, संगे ही भैया मछली पालन है, अगर
0: पालन है बकरी पालन है ना,
1: और मधुमक्खी पालन है, जो कहा है कि कृषि से जुड़े हुए कार्य हैं
0: और जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं जिनके माध्यम से अपन अपन फसल पे मतलब बिल्कुल
1: निर्भरता थोड़ी कम हो जाती
0: है, निर्भर नहीं रहेंगे अपने जे व्यवसाय से अपन है ना छोटे, और जो कम पूंजी में काम हो जाते हैं। देखो बकरी पालन बहुत कम पूंजी में हो जाता है, मक्खी पालन बहुत कम पूंजी में, मछली पालन बहुत कम पूंजी में हो जाता, तो ये छोटे छोटे पालन अपन जो करके अपन व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और भैया अपनी परेशानी जो भी अपने खर्चा पानी की दिक्कत आ रही है वो नहीं होगी,
1: वो नहीं होगी। और भैया जो अपन जो है फसल विविधीकरण भी कर सकते
0: हैं, उससे अपन अपनी भूमि को बचा सकते हैं, उपजाऊ शक्ति भाई बचेगी भैया, पोषक तत्व अपने अच्छे बने रहेंगे भूमि में और अपनी जो अपनी फसल को उत्पादन होगा
1: वो अच्छे होगा। और भैया अपन जो ही कहेंगे अपने भैया से कि भैया अपने जो खेत है वहां में खेती में जो है फसल विविधीकरण को अपनाए और अच्छो लाभ लें, और भैया फसल चक्र को भी अपनाए जैसे अपन के लाने अच्छो लाभ पहुंचे है ना भैया।
0: तो बहना अब अपने चौपाल कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा है, तो सब भैया बहनन काजे धर्मू और
1: रूही बहन की
0: राम राम, जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को धर्मू और संग में बैठी रूबी बहन, आपको भी हमारी राम राम
4: राम राम राम राम भैया। और देखो भैया, अपन खेती बाड़ी करा थे और अपन कछु समय से देख रहे हैं कि लगातार जो है रासायनिक उर्वरकन को, खाद को उपयोग अपन कर रहे हैं। हाँ, बहुत से किसान भैया कर रहे हैं
5: लगातार करता रहे हैं, जिससे कि अपनी भूमि की पोषक तत्व
4: जो भूमि है नुकसान पहुंच रहा है,
5: कम हो जा रही है।
4: हाँ, कम हो जा रही है,
5: भूमि हो जा रही है बंजर सी,
4: बंजर हो जा रही है, कठोर हो जा रही है, बाकी उत्पादन क्षमता घट जा रही है,
5: तो उत्पादन कम हो रहा है। तो भाई भैया कहते हैं कि उत्पादन हमारे बगल वाले खेत को तो उत्पादन अच्छो भाव है और हमारा उत्पादन कम निकलो, तो भैया आओ बाग में और हमें वो ही तो फर्क है। वो भैया काज कर रहे हैं, वो अपन को पूछना चाहिए, देखना चाहिए कि वो अपाई आजकल कई भैया ने देसी खाद पे आ गए
4: और प्राकृतिक जैविक पे आ गए, जैविक खेती पे आ गए हैं,
5: तो रासायनिक खादन को बहुत भैया ने बंद कर दो। अब जिनने मतलब ये सब चीजें देखेंगे
4: है ना, काय से
5: उत्पादन कम हो रहा है, बंजर हमारी जमीन
4: बंजर हो रही है। और दूसरे भैया, आजकल अपन देख रहे हैं कि लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, तो जो जैविक और प्राकृतिक उत्पाद है बिनको क्या है, बिनकी मांग भी बढ़ रही है बाजार में,
5: मांग बढ़ रही है, बढ़ के पैसा मिलाते हैं,
4: बढ़ के पैसा मिलाते हैं।
5: अगर अपन ये कहेंगे कि जो जैविक खेती से अपन ये साग सब्जी जो अपन गेहूँ चना सरसों जो भी फसल उगा रहे हैं अपन, तो वो चीज को उत्पादन के पैसा अलग से मिलाते हैं बाकी।
4: और भैया, आप जो देश के आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिन्ने भी जो ये आह्वान करो है कि रासायनिक उर्वरकन पर जो निर्भरता कम करें और प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाएं।
5: हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, तो जिससे कि अपनी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़े, पोषक तत्व बढ़े भैया, और मिट्टी बंजर होवे से बचे, जिससे कि अपन को अच्छी और बढ़िया उत्पादन और बढ़िया अपन लाने, जो
4: अपन को जो फसल उत्पादन मिलेगा वो अच्छो गुणवत्ता मिलेगा और अपन के लाने बाकी दाम भी अच्छे मिलेंगे भैया,
5: स्वास्थ्य भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
4: और भैया जे मान लो कि आप जो सगाओ जी जगत है बाकी लाने, जो बहुत ही अच्छी खेती है, पर्यावरण के अनुकूल खेती है, अपने पशु भी अच्छे रहेंगे और गाय के अपना स्वास्थ्य तो अच्छे ऊर्जा से रहेगा ही, और भैया अपनी जो खेत की माटी है बाको स्वास्थ्य भी सुधरेगा।
5: बिल्कुल सही बात है। और देखो भैया, कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसान भैयन को देसी गाय पे आधारित आदानों जैसे जीवामृत और बीजामृत इसको बनावे के लाने उनको सही उपयोग और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
4: कैसे कि भैया देखो, जब सरकार अपन प्रधानमंत्री जी जब आते हैं अपन से कह रहे हैं, तो अपन को भी जो कर्तव्य बनाते हैं, अपन भी बिन की बात को माने, कछु बिन ने जो आह्वान करो है तो अपन राष्ट्र हित में ही करो होगो।
5: तो कृषि विभाग द्वारा जो अपन जगह जगह पे गाँव में शिविर लगाए जा रहे हैं,
4: जागरूक करो जा रहा है
5: कि रासायनिक खादों के नुकसान बताए जा रहे हैं और प्राकृतिक खेती के फायदे बताए जा रहे हैं। तो ये भैया अपन को जब इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी जा रही है, तो अपन भी भैया जाकर

0: इस्तेमाल करें, है ना।
1: हाँ।
0: भैया भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन जैसे व्यापक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।
1: सही है।
0: प्रमुख उद्देश्य किसान भैयान को तकनीकी ज्ञान और आर्थिक सहायता प्रदान करवो है, जैसे कि अपन को भैया हर तरह से ज्ञान मिल सके। और प्राकृतिक खेती यानी खुशहाल किसान योजना भी अपन चल रही है।
1: हाँ,
0: तो जाको अपन है ना रुझान बढ़ावे के लाने मदद करवो चाहिए।
1: तो अपन भैया बहनन से यही कहेंगे कि आप जो है थोड़े से रकवा से शुरू करके प्राकृतिक खेती को अपनाएं। जी में जो है लागत भी कमाते, आप कछु खर्चा नहीं होते जामे,
0: अच्छो लाभ कमा भैया,
1: सगाई जीव जगत के लाने जो बहुत ही अच्छी है खेती। और भैया देखो अपन खेती के संगे अपन पशु पालते हैं, अगर जाए अपन व्यवसाय के रूप में करें, डेयरी के रूप में करें, तो जैसे और अच्छो अपन फायदा
0: हाँ,
1: ले सकते हैं।
0: उसको अपन गोबर मिलेगा। हाँ, और अपन जो कूड़ा करकट साग सब्जी छिलके ये सब अपन का है, अपन एक जगह
1: पर भैया देखो कोनू भी अपन कार्य कर रहे हैं तो बाघ को प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है। तो भैया यही सब जानकारी के लिए आज हम अपने भैया बहनन के लेकर आए हैं जो बातचीत जी को विषय है व्यावसायिक डेयरी प्रबंधन और संबंधित योजनाएं। और भैया जहाँ विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर गायत्री कश्यप, और जिनसे बतिया रहे हैं अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो अपन सब मिलकर
0: हाँ,
1: सुनाते
0: हैं भैया जी। हाँ। जानकारी
2: किसान श्रोताओं नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपको कई भेंटवार्ताएं सुनवाते हैं। इन भेंटवार्ताओं का लक्ष्य यह है कि आप इनसे कुछ सीख सकें। खेती किसानी के साथ साथ जो पैरेलल हमारे व्यवसाय हैं, खासतौर पर पशुपालन, इसमें आप अपने पशुओं के साथ अच्छा प्रबंधन कर सकें और उनसे अच्छा दुग्ध उत्पादन लेकर अच्छी आमदनी ले सकें। और पशुपालन से संबंधित एक विषय है व्यावसायिक डेयरी प्रबंधन एवं संबंधित योजनाएं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गायत्री कश्यप हैं। डॉक्टर साहब, सुनने वालों के मध्य में आपका स्वागत है। आप वर्तमान में कहां पदस्थ हैं?
3: धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं विकासखंड शिवपुरी में ही विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ हूं।
2: मैडम, जो ये विषय है कि दो हिस्से होते हैं कि व्यावसायिक डेयरी प्रबंधन के पहले प्रबंध हम कैसे करें और इससे संबंधित जो योजनाएं हैं, खासतौर पर गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी योजनाएं जो हमारे डायरेक्ट पशुपालक भाई को मिलती हो, तो पहले हम प्रबंधन पर बात करते हैं। तो वर्तमान में व्यावसायिक डेयरी प्रबंधन में हमारे पशुपालक भाइयों को जो इसका व्यवसाय करते हैं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने पशुओं के संग?
3: सबसे पहले हम व्यावसायिक जो डेयरी प्रबंधन है उसमें मैं व्यवहारिक रूप से मैं बोलूंगी कि जैसे पहले जो लोग पशुपालन करते थे कि खेती के साथ एक दो पशु रख लेते थे घर में और उसका जो दूध है वो घर में ही यूज करते थे, लेकिन अब जो है ये व्यवसाय के रूप में डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं लोग, मतलब एक मतलब पशुपालन से ही अपना मतलब रोज की चीजें पूरी कर रहे हैं और अपना आर्थिक लाभ ले रहे हैं। तो इसको बड़े रूप में लेने के लिए हमें पहले ही किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगी कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए आप स्वयं पशु प्रेमी होना चाहिए, और जब आप ये डेयरी व्यवसाय के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको इसको पार्ट टाइम के रूप में नहीं लेना है। जब भी आप इसको खोलेंगे तो आपको हमेशा ऐसा प्योर बिजनेस की तरफ आप लेंगे, तभी आप इसमें आर्थिक लाभ अच्छा ले पाएंगे और दुग्ध उत्पादन से अपने जो विभिन्न व्यवसाय हैं उसमें मतलब आप सफल हो पाएंगे। तो इसके लिए हमें तो कम से कम पशु प्रेमी तो होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कभी कभी लेबर नहीं रहती है या आपके मतलब परिवार में अन्य सदस्य नहीं है, तो इसके लिए आपको रेडी होना चाहिए कि हमें कभी काम भी करना पड़ सकता है, जैसे दूध निकालना, वहाँ की साफ सफाई करना। तो इस व्यवसाय में जाने से पहले हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
2: इसका कोई ट्रेनिंग सेशन भी चलता है क्या?
3: जी, अभी जो योजनाएं आई हैं उसमें भी मतलब ट्रेनिंग जो है कंपलसरी कर दिया है, इसके लिए ट्रेनिंग भी हम ले सकते हैं। जैसे कुछ जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है बफेलो का हिसार में, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कैटल का है मेरठ में।
2: हम शिवपुरी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा किसान जो इस वक्त सुन रहा है वो शिवपुरी जिले से जुड़ा हुआ है।
3: देखिए,
2: शिवपुरी में आपके विभाग या अन्य विभागों में कुछ इस तरह की सुविधाएं हैं जहां ये व्यक्ति जाकर ट्रेनिंग ले सके?
3: वैज्ञानिक तरीके से अच्छे से अगर लेना है तो जो मैंने अभी अनुसंधान केंद्र बताए हैं वहां से ले सकते हैं। राज्य स्तरीय भी मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके लिए अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है, प्रशिक्षण लेना है, तो वो संपर्क कर सकते हैं
2: आपसे।
3: तो जी, तो उसमें क्या है, जब एक पूल में नंबर सेलेक्ट हो जाते हैं किसानों के तो वो भेजे जाते हैं। यहाँ लोकल शिवपुरी में भी है एक ब्रीडिंग फार्म, भदावरी मतलब भैंस का फार्म है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं जाकर। बात करूँ। प्रबंधन के

0: हिसाब से हमें पशुओं का, जैसे डेयरी व्यवसाय करना चाहता है तो सबसे पहले पशुओं का अच्छा चयन करें। जैसे अगर आप गाय का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, जो जो भारतीय उन्नत नस्ल की गायें हैं, जैसे गिर, साहीवाल, थारपारकर, इनको लेकर दुग्ध व्यवसाय करें। इसके अलावा जो गाय की विदेशी नस्ल हैं, जो अच्छा जिनका दुग्ध उत्पादन है, जैसे जर्सी है और फॉलिस्टीन फ्रीजियन है,
1: जी
0: इनको ले सकते हैं। लेकिन भारतीय नस्ल की उन्नत नस्लों का अगर प्रयोग करेंगे तो ये हमारे हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छी हैं, तो हमें इन नस्लों का गाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसे भैंसों के लिए हमने हमें अच्छी नस्ल जो है, उन्नत नस्लें हैं, जैसे मुर्रा है, नीली रावरी है और भदावरी है, नागपुरी है। इन अच्छी, अगर उन्नत नस्लों का अगर हम चयन करेंगे तो हमेशा से ही दुग्ध उत्पादन में आर्थिक लाभ अच्छा मिलेगा। इसके अलावा हम पशुओं के चयन के अलावा हम प्रबंधन की बात करें तो आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन, इन सब चीजों में भी ध्यान देंगे। जैसे आवास बनाएंगे तो हमेशा जो वैज्ञानिक तरीके से जो आवास बनाए जाते हैं, जैसे जिसमें सिर सामने होते हैं पशुओं के, ऐसे सेट का निर्माण करें। उसमें प्रॉपर जो मेजरमेंट होते हैं उस हिसाब से हमें सेट बनाना चाहिए, जिससे आगे मतलब एक तो जगह की भी हमेशा मतलब बनी रहेगी, प्रॉपर जगह मिलेगी पशुओं को, इससे भी दुग्ध उत्पादन में फर्क पड़ता है। अगर हम कम जगह पे पशुओं को रख देंगे तो उनको स्ट्रेस होगा और दुग्ध उत्पादन कम होगा। सेट निर्माण के पहले हमें पशु चिकित्सक से अवश्य संपर्क करना चाहिए कि कैसे आवास हमें उनका बनाना चाहिए। और इसके अलावा आवास प्रबंधन में हम सेट तो बनाते हैं, उसके साथ साथ हमें उनका जो ओपन एरिया है चलने फिरने के लिए, उसके लिए भी स्पेस देना चाहिए।
1: जी
0: इसके अलावा हम स्वास्थ्य प्रबंधन में अगर हम बात करें तो हमें उनका प्रॉपर जो टीकाकरण है और कृमिनाशन है वो हमें प्रॉपर समय में करवाना चाहिए। HS और BQ, इनका अवश्य टीकाकरण करवाना चाहिए, फिर हर साल इनको रिपीट करवाना चाहिए। इसके अलावा सितंबर से लेके जनवरी तक हमें FMD का, मुंहपका खुरपका रोग, जो एक विषाणु जनित रोग है, इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। अगर इन महत्वपूर्ण बीमारियों का अगर हम टीकाकरण करवा लेते हैं तो हमें जो गंभीर बीमारियां जो होती हैं पशुओं में, उनसे उनसे राहत मिलेगी और पशुओं का नुकसान नहीं होगा।
1: जी अब हम योजनाओं पर फोकस करेंगे। योजनाएं कौन कौन सी हैं जिनसे हमारे किसान को या पशुपालक को डायरेक्ट फायदा हो रहा है?
0: इसमें दो योजनाएं हैं जो डेयरी के लिए हैं और ये हमारे मध्य प्रदेश शासन से ही दोनों योजनाएं हैं। एक छोटी यूनिट के लिए है, एक बड़ी यूनिट के लिए।
1: दोनों का जिक्र कैसे?
0: जो एक योजना है आचार विद्या सागर योजना, जिसमें से आप हम 5 से 10 लाख में मतलब प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और जो बड़ी योजना है वो एक ही है, 42 लाख की योजना, जिसे अभी ही मुख्यमंत्री जी ने जो भीमराव अम्बेडकर जयंती के दिन ही लॉन्च किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डेयरी योजना के नाम से है ये योजना। ये 42 लाख की योजना।
1: दोनों में क्या, किस तरह से पशुपालक लाभ ले सकता है?
0: कि आचार विद्या सागर के लिए तो हम जो नियरेस्ट का निकटतम पशु चिकित्सालय है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, या जैसे जो लोग शिवपुरी के हैं वो पशु चिकित्सालय शिवपुरी जो है वहाँ संपर्क करेंगे। और इसके अलावा जैसे जो जिले में हैं वो नियरेस्ट जो उनका पशु चिकित्सालय है वहाँ संपर्क करेंगे, वहाँ आचार विद्या सागर योजना के आवेदन मिलेंगे, उसको फिल करके वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
1: इस योजना के अंदर क्या है?
0: इस योजना में ऐसा है कि 5 से 10 लाख के बीच में हम इसमें लोन प्राप्त सकते हैं, और इसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इसमें 1.5 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको 2 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा भी हर साल इनमें ब्याज में भी इनको लाभ, मतलब 25,000 रुपए मैक्सिमम इनको सबवेंशन मिलता है, मतलब ब्याज
1: रिबेट
0: में,
1: मिलती
0: हाँ
1: है।
0: जी
1: तो इसमें करना क्या होगा कि उससे 5 से 10 लाख रुपए, आपने 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का बीच का बताया,
0: हाँ।
1: उसे उसने आवेदन किया, उसे राशि मिल गई, तो डायरेक्ट उसे पूरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे कि ये पार्शियली मिलेंगे?
0: कई ये बैंक के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे उनको 2 भागों में देनी चाहिए।
1: जी
0: पहले में वो कुछ सेड वगैरह निर्माण कर लें, और हम मतलब जो प्रोजेक्ट बना के देते हैं तो इसी हिसाब से देते हैं कि वो सेट का निर्माण कर लें और जो पशु लेके आए, आधे पशु लेके आए, फिर 6 महीने बाद फिर आधे पशु लेके आए। इससे क्या है, उनका जो मिल्क जो है, दुग्ध उत्पादन लगातार बना रहेगा। जैसे 10 पशुओं की योजना लेते हैं तो 5 पशुओं की अगर वो पहले ले आते हैं तो 6 महीने वो मतलब मतलब ये मिल्क उनका देते रहेंगे, फिर उनका जब शुष्क पीरियड आता है, जो समय आता है जिसमें गाय दूध नहीं देती है, उसके बाद जो अगले 6 महीने में हम अगर लाते हैं तो उसमें दूध उत्पादन उनको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से उनका आर्थिक जो समन्वय है वो बना रहेगा।
1: और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर योजना है
0: जी, इसमें यही है कि ये जो बड़े स्तर पर जो डेयरी व्यवसाय खोलना चाहते हैं वो इस योजना का लाभ लें। और इसमें जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो 5 से 6 दिन की जो डेयरी प्रबंधन पर ट्रेनिंग होती है वो जो मैंने संस्थान बताए हैं, या आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, तो मैं जो स्लॉट बुक होंगे उसमें आपको जगह मिल जाएगी।
1: ये तो ट्रेनिंग की बात हो गई, हम उस योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
0: जैसे 42 लाख की है ये टोटल योजना, इसमें 10% मतलब सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए, मतलब 25% इसमें सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए अनुदान देती है सरकार, और 33%
1: SC/ST के लिए,
0: हाँ जी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए
1: देती है।
0: तो इसमें लगभग 10 लाख रुपए अनुदान मिलता है, और 42 लाख टोटल इसमें लोन लेना पड़ेगा, मतलब लोन जो सब्सिडी अमाउंट है उसमें लोन नहीं लेना पड़ेगा, मतलब 30 लाख रुपए लगभग इसमें बैंक से फाइनेंस कराना पड़ेगा, जिसमें से 10% हितग्राही का लगेगा, लगभग 4 से 5 लाख रुपए हितग्राही का लगेगा, बाकी 25 लाख रुपए लोन में उसको 5 साल के ड्यूरेशन में उसको देना पड़ेगा वापस बैंक।
1: तो 25 लाख लोन ले लिया, बाकी जो डिफरेंस है जो आप सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए 25% बता रही हैं और SC/ST के लिए 33% बता रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस की राशि है वो कहाँ से प्राप्त होगी?
0: वो हितग्राही अंशदान है, मतलब किसी भी योजना का लगभग 10% हितग्राही को स्वयं बैंक में जमा करना पड़ता है पहले।
1: सपोज करिए मैंने आवेदन किया
0: जी,
1: मैं 42 लाख वाली स्कीम में आ रहा हूँ,
0: 42
1: लाख का 10% यानी 4,20,000 रुपए मैंने जमा कर दिए, बैंक ने मेरे को 25 लाख रुपए लोन दिया
0: जी।
1: तो 25 का लोन दिया, 4,20,000 मैं जमा कर चुका हूँ, यानी कि मेरे को लोन मिला 20,80,000 रुपए एक मोटा मोटा।
0: नहीं, 25 लाख आपको लोन लेना पड़ेगा,
1: 4,20,000 तो मैंने जमा कर दिए,
0: 4 लाख और जमा करना पड़ेगा, अतिरिक्त आपको जमा करना पड़ेगा,
1: यानी कुल मिला के मेरे हाथ में तो जो पैसे में से पैसा घटाएंगे तो 20,80,000 ही रहेगा ना, कि 4,20,000 तो मैं दे चुका हूँ बैंक को
0: जी, उसके अलावा आपको 25 लाख रुपए लोन लेना
1: पड़ेगा। लोन ले लिया, अब जो आप 25% जो राशि अनुदान की है वो कौन देगा? वो विभाग,
0: पशुपालन विभाग।
1: हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो राशि कहाँ से आएगी, जो अंशदान सरकार उसमें दे रही है वो कौन देगा मुझे?
0: वो पशुपालन विभाग आएगा, जैसे आपने इसको अप्लाई किया है पोर्टल
1: आपके
0: के माध्यम से,
1: विभाग के माध्यम से
0: अप्लाई किया, उसके बाद आपको वहाँ राज्य स्तरीय टीम इसको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स उसको
1: सर्वे करके चेक करेगी,
0: उसके बाद वो वापस बैंक के पास भेजेगी जिस बैंक में जाना है
1: जी।
0: वहाँ से उनको संबंधित मतलब इस उसमें वो देना पड़ेगा सहमति कि हाँ हम रेडी है, इनका सब सिविल स्कोर और इनका रिकॉर्ड सही है, तो इसके बाद हमारे मतलब जिले में फाइल आएगी
1: जी।
0: इसके बाद जब बैंक रेडी हो जाती है तो राज्य के पास वापस फाइल जाएगी, वहाँ से वो डायरेक्ट क्लेम कर पाएंगे बैंक वाले इस अनुदान राशि को
1: जी। वो फिर हमारे खाते में ट्रांसफर करेंगे
0: जी।
1: मैं वही जानना चाह रहा था कि 25 लाख लोन दे दिया, 10% मार्जिन मनी मैंने जमा कर दी, तो मेरे हाथ में तो 20,80,000 रुपए रह गए मेरे, लेकिन जो डिफरेंस है यानी कि जो अनुदान है शासन का, वो इसके बाद अलग से डायरेक्ट उसके बेनिफिशियरी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा
0: जी जी।
1: और टोटल इस तरह से 42 लाख रुपए करीबन हो जाएंगे, जिसमें 25 लाख लोन रहेगा जिसको हमें रिफंड करना होगा, जिस पर ब्याज जो भी टैरिफ होगा उसके अनुसार दिया जाएगा। और कौन सी खास बात है या और कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे इस डेयरी के कार्य में दूध जिससे हम ज्यादा ले सकें, क्योंकि पशुपालन से अंतिम लाभ जो होता है वो दूध होता है।
0: जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी चल रही है
1: जी।
0: जैसे एक बार हमने डेयरी व्यवसाय खोल लिया, अब इनके पशु आहार है, बीमा है, इनकी मेडिसिन है, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी चलाई है
1: KCC
0: जी। KCC इसमें हर पशु मतलब जो दुधारू पशु होते हैं उसमें 18,000 रुपए और जो दुधारू गाय है उसमें 15,000 रुपए का प्रावधान है, कि मतलब जैसे जिसके पास 5 पशु हैं तो ऐसे 90,000 की उसकी किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, तो उसको समय समय पर उसको निकाल कर उसके आहार की व्यवस्था कर सकता है, बीमा की व्यवस्था
1: बाद में जमा करना है।
0: उसकी
1: कोई अंशदान सरकार की तरफ
0: नहीं, इसमें जैसे जमीन की किसान क्रेडिट कार्ड योजना है से ही
1: जानवरों के लिए है, यानी कि आप पर पैसा ना हो तो उस समय बैंक आपको मदद कर देगी, मतलब किसी आपको कर्ज लेकर या किसी लोकल साहूकार से नहीं लेना है, आप बैंक से कर्ज लीजिए उस कार्ड के आधार पर और बाद में बैंक का आप जमा कर दीजिए।
0: किसान क्रेडिट योजना एक प्रकार से आपका मित्र है, आपको जब भी जरूरत हो आप पैसे निकाल सकते हैं और अपनी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करके अगर आपको लाभ मिलता है तो वापस जमा कर सकते हैं। उस चीज के लिए निकालते हैं, जैसे आहार के लिए लेंगे तो निश्चय रूप से उसका दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा।
1: तो इसकी क्या बिलिंग के बिल के कागज हमें बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे कि हमने जो पैसा लिया उसके बाद हमें उसके कागज देने पड़ेंगे?
0: डायरेक्ट आप जमा कर सकते हैं,
1: डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना है, हमने मांगा उनने दिया और बाद में हमें रीपे करना है। और किसी खास बात का जिक्र करना चाहिए?
0: इसके अलावा भी एक मुर्रा पाड़ा और नंदी सांड योजना है, जैसे इसमें उन्नत नस्ल के जो मेल है नर वो मिलते हैं, इसमें जैसे जिसके पास बहुत सारे पशु हैं तो इसमें उन्नत नस्ल के अगर हम सांड या नंदी से हम अगर क्रॉस करवाएंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उन्नत नस्ल की होगी, तो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
1: तो डॉक्टर गायत्री कश्यप जी, व्यावसायिक डेयरी प्रबंधन और इससे संबंधित योजनाएं जिससे हमारा पशुपालक लाभ ले सकता है, इन सारे पहलुओं पर बातचीत हुई। हम उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वाले पशुपालक और किसान इसका लाभ लेकर अपने पशुपालन के व्यवसाय को अच्छा बना सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं और अपनी आर्थिक उन्नति करके अपने परिवार का भरण पोषण भरपूर कर सकते हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद
2: भैया। अब अपन सुन रहे थे जो भेंटवार्ता जाको विषय है तो व्यावसायिक डेयरी प्रबंधन और संबंधित योजनाएं, और जाकी जानकारी दे रही थी डॉक्टर गायत्री कश्यप और इनसे बातचीत करी थी अपाय भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल ने। तो भैया आओ देखो कितने अच्छी जानकारी दई और विस्तार से जानकारी दई, जा जानकारी को जिन जिन भैया ने आज चौपाल पर जो भैया बैठे हुए हैं, जो भैया अपाय सुन रहे हैं, वो भैया जरूर लाभ लेवेंगे। और भैया हमारी तो यही कोशिश रहते है कि हम अपनी जानकारी के माध्यम से सभी भैयन को अलग अलग विषयों पे रोजीना अपन सुनवाते हैं,
3: अच्छी अच्छी जानकारियां सुनवाते हैं। हाँ, और भैया अपन जो भैया हैं बे लाभ भी लेते हैं।
2: तो भैया और अब हम चर्चा को रोकत भय,
3: अब अपन भैयन के लाने सुनवाते हैं जो लोकगीत
2: जय गावे हरनाम सिंह लोधी ने।

0: हरनाम सिंह लोधी को गाँव भाव अपे अपन ने जो लांगुरिया गीत सुनो
1: भैया, आनंद आगो चरखी चल रही बर के नीचे, बस पीजा लांगुरिया भैया। इस समय जगह जगह पे भैया ने चरखी लगा रखी है और इस समय गर्मी पड़ रही है, तो भैया और रस को इस समय बहुत चल रहा है सीजन, है ना।
0: और भैया जैसा में जो रस है वो पीना भी चाहिए,
1: हाँ, है ना। तो गन्ना को रस सबसे ज्यादा फायदेमंद है इस समय, और गन्ना को रस बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन बामे बर्फ कम डाल के पिए।
0: हाँ, मतलब जैसे आप
1: ज्यादा बर्फ को ज्यादा ठंडो भैया नुकसान करे, तो कोई भी चीज है ज्यादा ठंडी, क्योंकि अपना शरीर अंदर से गर्म है और अपन एकदम ज्यादा ठंडी चीज कोई भी खाएंगे तो वो नुकसानदायक होता है।
0: हाँ,
1: इसलिए भैया अपन है ना ज्यादा ठंडी चीज ना खाएं,
0: जैसा में ठंडी चीज से परहेज करें।
1: हाँ,
0: माने के अपन समय के हिसाब से ले, जैसे कि आप जैसे
1: अब देखो तरबूज आ रहे, खरबूजा आ रहा हो, ककड़ी आ रही है ना, खीरा आ रहा है, आम को पना है, इमली को पना है,
0: इनको उपयोग
1: ये अपने स्वास्थ्य के लाने बहुत लाभदायक है। ये फल फ्रूट आम भैया ये सब चीजें अपन खाते रहे पियत रहे, क्योंकि ये तरल पदार्थ हैं और जो अपने शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी को पूरी करते हैं,
0: कमी को पूरी करते हैं और अपने शरीर को ठंडक देते हैं,
1: ठंडक देते
0: हैं। भैया सत्तू,
1: सतुआ इस समय भैया बहुत फायदेमंद है, क्योंकि गर्मियों में सतुआ हमारे सब भैया सुबह ही सुबह भैया सतुआ को नाश्ता कर लेते हैं और भैया चले जाते हैं अपने काम पे, है ना।
0: ये जो पौष्टिक भी होते हैं,
1: बहुत पौष्टिक होता है, बहुत पोषक तत्व होते हैं सतुआ में, तो ये गर्मियों में तो भैया सभी लोग किसान भैया अपने ये तो अपन सब खाते ही है सतुआ।
0: हाँ, तो इनको
1: मठा पिया थे सुबह सुबह,
0: सुबह मठा पिए,
1: मठा भैया सतुआ है, ये सब चीजें अपने लाने बहुत फायदेमंद है, तो ये सब चीजें को अपन इस्तेमाल करें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, है ना भैया।
0: हाँ,
1: तो जिससे कि अपन स्वस्थ बने रहें और जा गर्मी के मौसम में अपने मोड़ा मोड़ी और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि ये धूप में ना निकले।
0: और भैया वो अपने कार्यक्रम को समय पूरा हो चलो है, तो अपन जो है सगा भैया बहन से किसान मणि कार्यक्रम से ले लेते हैं आज्ञा। तो रूबी बहन
1: और धर्मू भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे
2: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये युवा अब विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में शामिल होंगे और आज हमारी चर्चा का विषय यही है, 19वां रोजगार मेला, रोजगार सृजन से राष्ट्र निर्माण। इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार अनुपज जी।
2: शेखर जी, रोजगार मेला के अब तक के 18 एडिशंस के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है?
3: रोजगार मेला अपने आप में सरकार की एक बड़ी इनिशिएटिव है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक प्राथमिकता दी गई है। आपने जैसे कहा कि 12 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। ये 19वां मेला था, 47 जगह पर, 47 जगह पर आज आयोजित हुआ है, जिसमें रोजगार मेले में जो एक प्रोसेस रहती है कि जहां जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं वो और उनको एम्प्लॉय करने के लिए जो लोग जाते हैं, खास करके सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट होते हैं, उन दोनों को ये करके किया जाता है। और इसका एज लिमिट जो है 18 से 35 तक है। और सबसे विशेष एस्पेक्ट इस मेला में ये है कि 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास जो लोग पास कर रहे हैं, 1900 लेकर जो ITI डिप्लोमा लिए हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं, ये सबको कवर करता है। तो एक यूनिक एक्सरसाइज रहा है जिसमें बहुत लोग फायदा उनको मिला है। और लगातार एक बात आती रहती है कि बेरोजगारी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट्स, जो बड़े रिक्रूटर्स हैं, जैसे रेलवेज है, आपकी बैंकिंग सेक्टर है, आपकी हायर एजुकेशन है, आज के मेले में भी ये लोग सब भाग लिए हैं। सरकारी नौकरी को लेकर हमेशा एक अट्रैक्शन रहती है कि ये सबसे सिक्योर है, लेकिन आज के मेले में जो बातें सामने प्रधानमंत्री ने रखी है कि जिनको ये नौकरियां मिली है उनका भूमिका क्या है, वो आगे जाके क्या करेंगे, ये सब बारे में प्रधानमंत्री ने आज सबको बताया है।
2: जी, ये जो आपने आखिरी बात कही, इस पे भी जरूर चर्चा करूंगी मैं आपके साथ शिखर जी, पर अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं, ये राष्ट्र की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार बन रहे हैं। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
4: आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
2: शिखर जी, रोजगार मेला जैसी पहल जो है वो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करती है और कैसे प्रोत्साहित करती है?
3: आज प्रधानमंत्री का आह्वान यही है कि जो लोग सरकारी नौकरी पे जा रहे हैं वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ले रहे हैं। वो कमिटमेंट क्या है? लोगों को सेवा करने के लिए, क्योंकि ये केवल एक नौकरी नहीं है, एक माध्यम है जिससे आप देश की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए आपको अपने आप को कर्मयोगी के रूप में काम निभाना है। और ये जो आज की जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं देश के सामने, जो जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं वो भी अपनी शिक्षा बंद नहीं कर सकते
2: जी,
3: लगातार उनके लर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ये जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो भी एक चुनौती दे रहे हैं कि उसको आप कैसे अडेप्ट करेंगे, सिस्टम में कैसे करेंगे, और लोगों की बढ़ती हुई जो मांगे हैं उसको कैसे आप दूर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का यही था कि आज के युवा, उन पर पूरा भरोसा है कि वो ये कर पाएंगे। और साथ में हमेशा ये याद रखेंगे, सरकारी जॉब जो है एक माध्यम है लोक सेवा के लिए, ये बात इनको कभी भूलना नहीं चाहिए।
2: सफल उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी हाल में ही संपन्न हुई 5 देशों की यात्रा के आर्थिक और कूटनीतिक परिणामों के बारे में भी विस्तार में बताया और उन्होंने कहा कि इन साझेदारियों का उद्देश्य ये है कि भारत के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्राप्त हो।
4: साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं।
2: शिखर जी, प्रधानमंत्री की बातों से स्पष्ट है कि भारत अपनी प्रतिभाशाली युवा आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का लाभ उठा रहा है और बहुत अच्छी तरह उठा रहा है।
3: बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी जो भारत जिस विकास यात्रा पे चल पड़े हैं, उसके सामने एक विजन है, वो है विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ रहे, समझौता हो रहे, नए नए टेक्नोलॉजी को लेकर, जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, इस तरह कई चीजें हो रही है। हाल में जो प्रधानमंत्री गए थे नॉर्डिक कंट्रीज, वहां जाके इन्होंने कई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इन देशों के साथ। इसका फायदा क्या है, क्योंकि बड़ी बात आती है इस पर, इसको आलोचना भी विपक्ष पार्टियों से की गई।
2: जी बिल्कुल,
3: कि या एक तरफ आप ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश जाने का लक्ष्य यही है कि पांच कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट पार्टनरशिप होगी, इसका सारा मकसद यही है, ताकि भारत अवसर पैदा करें अपने नौजवानों के लिए, साथ में अन्य देश है वो भी भारत के विकसित यात्रा में भाग लेने चाहते हैं, एक पार्टनर बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें समझना चाहिए कि जब भी इस तरह की डायलॉग्स होते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, भारत को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अन्य अन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इनोवेशन है, और सबसे बड़ी जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात, क्योंकि आजकल समुद्र ही सबसे ज्यादा अवसर देता है,
2: जी बिल्कुल,
3: उसमें मैरिटाइम जो कोऑपरेशन होती है, वो ब्लू टेक्नोलॉजी हो, फिशिंग हो, शिपिंग हो, ये सारे चीजों के साथ बातचीत हुई है और समझौते भी हुए, जिसका फायदा हमारे युवाओं को जाएगा, क्योंकि नए नए अवसर खोलेंगे, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, उस टेक्नोलॉजी से भी आगे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी और सुधरेगी और लोगों को फायदा होगा।
2: शिखर जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से अपनी आर्थिक साझेदारियों को बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है और उसका विविधीकरण भी कर रहा है। क्या आप सहमत होंगे कि इससे न केवल भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और जो उद्यमी युवा पेशेवर हैं, उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, बल्कि ये ब्रेन ड्रेन को रोकने और उसे पलटने में भी मदद करेगा?
3: बिल्कुल, देखिए, ब्रेन ड्रेन की जो बात होती थी आपके 60s, 70s, 80s में, ये बातें आती थी कि हमारे IIT से, हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, जो टॉप कॉलेजेस है, वहां से लोग पढ़कर निकलकर बस विदेश जा रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आज भी लोग विदेश जाते हैं, लेकिन जाके वहाँ शिक्षा और अधिक एडवांस शिक्षा प्राप्त करके फिर भारत आना चाहते हैं। जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, वो सब खोल रहे हैं और उसपे हमारे युवा जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं भारत में कितने यूनिकॉर्न्स आ चुके हैं, मतलब जिसकी वैल्यूएशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और प्रधानमंत्री की अभी जो यात्रा है, आप देख लीजिए किस किस क्षेत्र में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो रहा है। केवल नेदरलैंड्स को ले लीजिए, सेमीकंडक्टर्स, पानी, सिंचाई, कृषि क्षेत्र में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में नेदरलैंड्स के साथ हुआ, जो आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन स्वीडन के साथ हुआ है। और फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी और जो मैरिटाइम कोऑपरेशन की हमने बात की, वो नॉर्वे के साथ हुआ है। इसके अलावा PM यहाँ जाने से पहले UAE गए थे, वहाँ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे हुआ है, और कई डिफेंस क्रिटिकल मिनरल साइंस टेक्नोलॉजी इटली के साथ हुआ है। ये जिस तरह पार्टनरशिप्स बनते जा रहे हैं, ये सारे पार्टनरशिप्स में हमारे युवा अच्छे शिक्षा प्राप्त करके उसमें अपने आप को केवल जॉब सीकर्स नहीं बनना चाहते, जॉब गिवर्स बनना चाहते हैं। ये बड़ी चेंज आई है।
2: शिखर जी, अपने भाषण में आज प्रधानमंत्री ने देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार आ रहा है, जो लगातार तेजी से बढ़ रही है, उसमें उन्होंने नारी शक्ति की भूमिका भी जो बढ़ रही है लगातार, उसके बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, और जब वो ये सुनते तो न सिर्फ मन गर्व से भर जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है और बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
3: बिल्कुल, देखिए महिला मर्द के साथ कंधा मिला के अपने जगह प्राप्त कर ली है, ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं जहां

0: महिलाओं ने अपनी रजिस्टर नहीं की हो अपनी मार्क ऑफ टैलेंट को, अपना लीडरशिप को, अपना इनोवेटिव स्किल्स को। एक क्षेत्र नहीं है, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आगे लीडरशिप की काम इतना जबरदस्त हो रहा है जिससे लग रहा है कि पूरी जो पोटेंशियल है हमारी महिलाओं की, जो स्ट्रेंथ है, उसको भारत इस समय अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर पा रहा है। और उसका ज्यादातर कारण है सरकार ने जिस तरह प्राथमिकता दी है महिला शिक्षा, महिला आगे बढ़ने का जितना एवेन्यूज, और उसको एनकरेज करने के लिए जो स्कीम्स और प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके वजह से जो विकसित भारत यात्रा में महिलाओं को, मतलब हर दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कोई एक सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलता है।
1: सफल उम्मीदवारों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता में उनके माता पिता, उनके परिवारों और समाज के योगदान का भी उल्लेख किया।
2: आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहाँ पहुँचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुँचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुँचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है।
1: प्रधानमंत्री द्वारा परिवारों और समाज को दिया गया ये जो एक संदेश, एक सकारात्मक ऊर्जा है जो न केवल युवाओं को बल्कि पूरे देश को प्रेरित करने के लिए बेहद जरूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: प्रधानमंत्री ने एक पॉइंट इस कनेक्शन में जो बताया, देखिए आजकल ज्यादातर युवा जो आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिनकी लीडरशिप हम देख रहे हैं
1: जी,
0: वो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: यानी टियर टू टियर थ्री वहां से आगे आ रहे हैं। जो स्टार्टअप की आप देखेंगे प्रोफाइल, ये सारे यही जगह से हमारे युवा आ रहे हैं, जो अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक चैलेंज लेकर कि भाई हमें इनोवेटिव कुछ करना है, और एक प्रकार से एक आंदोलन बन गया है
1: जी,
0: नेशनल इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और देखिए ये सारे नौकरी के चक्कर में नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, सरकार कई सुविधाएं दे रही है, आपको कई स्कीम्स है, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतनी कई स्कीम्स है जिसका फायदा लेकर आप देख रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं। इससे ये दिखाता है कि कोई भी संस्था हो, उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ, उसकी बल उस लोगों के साथ है, जो लोग उस संस्थाओं को चलाते हैं, जो संस्थाओं को नेतृत्व देते हैं।
1: शिखर जी, अब तक जो रोजगार मेला है वो एक सरकारी पहल रही है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना है, ऐसे आयोजनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में आपकी क्या राय है?
0: ज्यादातर ये रोजगार मेला में सरकारी संस्था या सरकार से जुड़ा हुआ पब्लिक सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी समय आ गया है
1: जी,
0: ये जो हमारी यंग टैलेंट है, युवा टैलेंट है, इसको उनको भी टैप करना है, क्योंकि सरकार ने बहुत दिया है निजी क्षेत्र के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए बहुत कुछ किया है, और यही समय है, सही समय, बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में क्या है कि कुछ ना कुछ विश्व में कोई चैलेंज आ जाता है तो फिर उससे डर जाते कैसे करेंगे, लेकिन भारत सक्षम है, भारत की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आगे बढ़ाने के लिए सरकार एकदम लीडरशिप लेके आगे जा रही है। ऐसे समय में निजी क्षेत्र को भी अपना भागीदारी निभाना है, जैसे सरकार कर रही है वैसे सरकार के साथ हाथ मिला के अपना जो करना है वो करना है, तब भी जाके अवसर आगे आएगा।
1: हम जब बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी की रोजगार सृजन में, तो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो इनके इनिशिएटिव्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन में?
0: आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए शिप बिल्डिंग क्षेत्र ले लीजिए, शिप रिपेयर ले लीजिए, इसके लिए देखिए सरकार ने कह दिया कि 75,000 करोड़ अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए
1: जी।
0: तो आपको इसको हाथ में लेकर फिर उसपे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब 50,000 करोड़ की आप बात करते हैं तो उसपे तो मेन इंडस्ट्रीज होंगे, उसके साथ में एंसिलरी इंडस्ट्रीज होंगे, उसके बाकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होंगे। इस तरह कई भी एक स्कीम ले लीजिए, उस स्कीम में आप देखेंगे उसके डाउनस्ट्रीम भी होती है, एक मेन प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट से जुड़ा बाकी प्रोजेक्ट है जिसपे अगर निधि क्षेत्र उसपे आना चाहते हैं। देखिए वैसे ही कई क्षेत्र अब खुला गया, आपको डिफेंस खुला गया, डिफेंस में इतनी स्कोप बढ़ गया, आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अभी पार्टनरशिप पे आगे आ रहे हैं, और आजकल हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक तक मिसाइल्स, आपके सिस्टम्स, आपके वेपनरी सिस्टम, ये सारे अभी ज्वाइंट प्रोडक्शन में चल रहा है
1: जी।
0: आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी आत्मनिर्भरता किस तरह इसकी और हम कैसे बढ़ रहे हैं।
1: शिखर जी, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे साथ ये चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुर्खियों में कार्यक्रम का ये अंक हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।

एस डी बर्मन का संगीत शैलेंद्र के लिखे बोल लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गाइड से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम है अनामिका।

आरिफ मिल्खा संगीत, मजरूह के लिखे बोल, आशा भोसले की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अनामिका से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, भूपिंदर और साथियों की आवाज़ में फिल्म ज्वेल थीफ से।

एस डी बर्मन का संगीत मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल, लता मंगेशकर, भूपिंदर और साथियों की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ज्वेल थीफ से। कार्यक्रम फिल्म संगीत का है और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आशा भोसले, बप्पी लाहिरी और शशि कपूर की आवाज़ में फिल्म नमक हलाल से।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

पप्पू लाहिरी का संगीत अनजान के लिखे बोल, आशा भोसले, पप्पू लाहिरी और शशि कपूर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नमक हलाल से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं राहुल देव बर्मन, आडी बर्मन साहब की आवाज़ में फिल्म शोले से।

आर्टी बर्मन का संगीत और उन्हीं की आवाज़ बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म शोले से अभी आपने ये गीत सुना और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को

0: अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: सबकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई, हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहाँ जहाँ कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नए नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेको से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9.
3: The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy.

0: अपराध की मौत हो गई। और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन व सलामती से वाबस्ता मामलात पर तवल्ले ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमरीका आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया। इनमें दिफा, कलीदी, टेक्नोलॉजी, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई की यकीनी फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम से अवाम के राबते शामिल हैं। जनाब मोदी ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल निकाले जाने की बात दोहराई और क़याम-ए- अमन की कोशिशों के तई भारत की लगातार हिमायत का यादा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे, जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है। नई दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने की एक जेली इमारत का इफ्तिताह करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीका में भारतीय कंपनियों ने जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, उससे इस बात की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत और अमरीका बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के बारे में कई और पुरजोश और नए ऐलानात करने वाले हैं। जनाब रूबियो ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो बहुत संजीदा रहनुमा करार दिया, जो तवील मुद्दती मनसूबों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं।
1: Anchoring that is the relationship between the President and the Prime Minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the President had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے رہن سہن کو بہتر بنانے اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے اہم وسیلے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होना चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साझेदारी भी कायम कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौके और रोजगार फराहम करना, नीज आलमी सतह पर उन्हें रोशनास कराना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: आज 19वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए गए।

0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी में सावी विहीर सनती स्टेट में कायम तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 155 mm के तोपखाने के गोले तैयार करेगा और इसकी सलाहियत सालाना 5,00,000 गोले तैयार करने की है। गोले तैयार करने की पूरी टेक्नोलॉजी और खाम माल अंदरून मुल्क का ही होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वक्त भारत को दिफाई साजो सामान के दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा बरसों में मुल्क दिफाई साजो सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा। जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साजो सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनती बुनियादी ढांचा है, वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत मुस्तकबिल की जंगी सलाहियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के जरिए दिफाई साजो सामान की तैयारी के मामले में खुद कफील बन रहा है। महाराष्ट्र के वजीराला देवेंद्र फडणवीस और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की।
1: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मफाद आम्मा के प्रोजेक्ट के लिए ये जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दीगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाक़ इस ठिकाने की जरूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील ना होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। वजीराला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नजरिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए विकसित भारत GRAMJI एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स, मुतल्लिका फरीक, तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: विकसित भारत GRAMJI एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह फायदे हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। 1986 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। 1988 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे

0: से क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। आईआईटी पटना के निदेशक डॉक्टर टीएन सिंह,
1: यहाँ पर तीन शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, टीबीआई, टीआईएच। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल आईआईटी पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ आईआईटी, कुछ एनआईटी, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार आईआईटी पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। एआई के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम एआई के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
2: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
3: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपोजिट्स होता है, तो ये डिपोजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्कली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्कली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रांग एसिड और अल्कली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित कर

0: तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे इस शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
1: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
2: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और बॉम्बे की संस्था है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड्स की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एलनीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
3: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट टेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपरफूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
4: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
5: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
3: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
6: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है, एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिक को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रासायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए, जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड 19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
3: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
7: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चर्चा करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी सचित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साथी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में तिरोड़े का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा खिलती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
8: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे, आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
9: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और

0: याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहाँ हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। क्योंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूँ, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय,
2: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमायालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पी जी पद्म कुमार से प्राप्त

0: की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पी आर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayal Puram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Changanasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankara Narayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: The next item is रावे हिमगिरी कुमारी in the राग तोड़ी, set to आदि ताल, composed by श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: Expanded commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी

0: बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट कानों में रस घोल रही है। क्षितिज पर सूरज की लालिमा ने बसेरा डाला है, क्षितिज पर सूरज की लालिमा ने बसेरा डाला है। कायनात का प्यारा तोहफा ये भोर सुहानी लाया है। स्वागत कर रही है ये ताजगी भरी सुबह आज की नव किरणों की रोशनी में, सारी दुनिया को एक नई ताजगी से, खुशियों से सराबोर कर रही है। हम भी आपके साथ वक्त की रफ्तार के साथ आपका साथ निभा रहे हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड के माध्यम से भोर सुहानी लेकर हाजिर हूँ मैं आप ही की सेवा में, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुप्रभात, प्यार भरा मेरा नमस्कार। ये सवेरे का सूरज हम सबके लिए है।

नई रोशनी से प्रकाशित करता सवेरे का सूरज दुनिया का हर कोना अपनी लालिमा से भिगोए हुए है। धीरे धीरे ये लालिमा आसमान से लेकर दुनिया के हर कोने तक छा जाएगी और इस सवेरे के सूरज का आज के नए दिन का स्वागत करने में कोई भी कोर कसर छोड़ नहीं रहा। जी हाँ, वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट भी हो रही है। आज की सुबह की स्वागत की तैयारियों में सब लगे हुए हैं। ये ताजगी भरी सुबह आज और कौन सी खुशियां लेकर आएगी हमारे लिए, ये अभी तक एक रहस्य है। जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतेगा, हम अपनी अपनी खुशियों की ओर रवाना हो जाएंगे। राह में नई चुनौतियों को पार करके एक खुशियों भरा रास्ता चुनेंगे। पत्तों पर बिखरी ओस की बूंदें, ठंडी हवा, ये सब इस बात का सबूत है कि कायनात ने हमें आज का दिन एक और तोहफे के रूप में दिया है। और कौन कौन इसकी स्वागत की तैयारी कर रहा है या कैसे स्वागत कर रहा है, सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।

झूमती हवा के साथ हम भी बहकना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं, लेकिन वक्त की तरह हवा भला कहाँ रुकती है। जी हाँ, ये हवा हमें ठंडक तो देती है, हमारे दिल को राहत देती है, लेकिन रुकती कभी नहीं। फिलहाल वक्त भी भाग रहा है, दौड़ रहा है। 5:25 और 33 सेकंड हो रहे हैं। आप हैं भोर सुहानी में रूपा के साथ। तो जनाब, आज का दिन भी हर दिन की तरह एक खास तोहफे की तरह है।

या यूं कहें कि जिंदगी का एक और साफ और नया पन्ना, जिस पर आज हम अपनी खुशियों की नई इबारत लिख सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी के 100 दिनों से अच्छे हैं प्यार के कुछ दिन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।